0: आज भी फिर से अपील किया है। तो अभी जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने लिया है उसका ब्रीफिंग हमारा आईन भी मंत्री जी ब्रीफिंग करेंगे। हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। अब तो कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली
1: रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है, जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कंडीशंस। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन एनी डिस्कशन बिफोर मिस्टर प्रधान इज सैक्ड।
2: Well, listen, breaking news coming in at this hour. Let's take you through it. Well, Sonam Wangchuk has released a new video clarification. That's right, Sonam Wangchuk in his new video has now gone on to say, the student safety was my top priority. He even has added that Dharmendra Pradhan's resignation was never my main demand. Sonam Wangchuk has said that the government already facing political pressure and that the focus was to shield the students from the FIRs. He said that he sought assurance of no action against the protesters and ended the fast to prevent violence. He wants to maintain peace, as what Sonam Wangchuk has said in his latest video. Let's also take you through the details of it.
3: तो 21 तारीख को ट्यूसडे को ऑर्डर के बाद रात को मैं यहाँ गुड़गांव के हॉस्पिटल वेदांता हॉस्पिटल में पहुँचा और उसी रात देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी आए। मुझे बताया गया इस एजेंसी के अफसरों ने कि वो आ रहे हैं कुछ बात करने, और फिर आए और उन्होंने कहा कि आप अनशन तोड़िएगा, हम चाहते हैं अनशन आपका न रहे, वगैरह वगैरह। मैंने उन्हें कहा कि मैं यूं ही तोड़ने के लिए तो बैठा नहीं हूं, शर्तें होंगी उनको आप माने तो मैं अनशन तोड़ भी दूंगा। तो शर्तें पूछी गई हमसे, मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन। वैसे ही मैंने कहा जो छात्र हैं सुसाइड विक्टिम्स उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए, पार्लियामेंट में इस इशू पर और अकाउंटेबिलिटी पर पूरा बहस किया जाए। और एक नया हमने जोड़ा कि जो भी छात्र CJP के और बाकी उनके लीडरशिप जिन्होंने प्रदर्शन किया है पीसफुली जंतर मंतर पर और फिर 20 मार्च को संसद मार्च किया, उनमें से किसी पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाएंगे, FIR नहीं किए जाएंगे, तब मैं ये अनशन तोड़ूंगा। तो उन्होंने एक दो को तो मानने की रजामंदी जाहिर की, दो तीन पर वो पूछ के बताएंगे ऐसा कहा और फिर वो चले गए। अगले दिन शायद वो आएंगे ऐसा मुझे बताया गया था कि आप तोड़िएगा, हम इस पे बात करके आएंगे और हम आपको अनशन तोड़वाएंगे। मगर मैं नहीं चाहता था कि मैं अनशन उनके हाथों तोड़ूं, केंद्रीय मंत्रियों के हाथों। इसीलिए मैंने मांग की कि जो हमारे अलग अलग दलों के राजनीतिक दलों के सांसद हैं वो सब जितने आ सकें आएं, और फिर हमारे छात्र नेता CJP के आएं, और लद्दाख के जो नेता लद्दाख से यहाँ आए थे वो आएं, और उन सब के उपस्थिति में मैं अनशन तोड़ूं। अगले दिन मैंने इसके लिए उम्मीद की और आए भी लोग यहाँ पर। मगर अगले दिन सांसद आए कोई 15 से 20, उन्हें किसी को अंदर नहीं आने दिया गया। बाहर गेट पर खड़ा कर तीन तीन चार चार घंटे इंतजार

0: तैयार करवाया गया। सीजेपी के हमारे छात्राएं आई थी, उनको भी रोक कर रखा गया। लद्दाख के नेताओं को तो पूरा आधा दिन इंतजार करवा के शाम को खाली हाथ लौटा दिया गया। इस तरह से उन पर क्रूरता से व्यवहार किया गया।
1: Well, my colleague Anushka joins us on the broadcast to bring us the details. Anushka, there was widespread controversy on the manner in which Sonu Wangchuk broke his fast, and I believe he's now issued a clarification via a video message. If you could just walk our viewers through the details, what exactly it is that the environmentalist has said?
2: That's right, Reet. We are seeing a lot of controversy going around in the manner with which Sonam Wangchuk has broken his fast. Now, he has issued a video clarification saying that the FIR and legal action was the main thing that he was worried about. He was worried that the youth who were involved in the protest that happened on 20th of July will have to face punitive action by the government and by the authorities that were involved there. So that is why he said that he remembered the 24th of September 2025 when the youth of Ladakh were fired at, and that is why his main priority was to in fact keep the youth safe. That is why when the government gave a written assurance that no action will be taken, no punitive or retaliatory action will be taken against the student, that is when he broke his fast. He said that he could have very easily made a deal in a closed room, but rather he chose to be on the streets of Delhi NCR fighting for the cause of the students for educational reforms. We have seen that now the CJP will enter a third phase of discussions with the government today. Afternoon is what we are getting to know. Around 3 p.m. is the time when once again the CJP delegation is set to meet the government regarding the educational reforms. We have seen the government taking action on the demands of the students. We have seen how fast track courts were informed about the recent development that the Prime Minister had announced directly through his Twitter handle. We have seen the Prime Minister directly addressing the students second day in a row about how he is quite glad that many of the students have given positive feedback. But now we are seeing this recent controversy in which Sonam Wangchuk has hit out and has said that there was no deal that he made, and for 26 long days he was on a hunger strike and had lost 11 kilos rather than making a deal in a closed room, and that he was worried about in fact the security and well-being of the students who were involved in the protest on 20th
1: All October. Right. Over to you. Right, absolutely, Anushka, thank you so much for joining us and sharing those crucial updates with us. Let's take you to more developments coming in at the Sabo. Well, the stage is set for talks, a third round of talks between the government and the CJP today. The meeting is likely to take place this afternoon at around 3 p.m. It remains to be seen whether there will be a breakthrough or a deadlock will continue. The sticking point remains the resignation of the Union Education Minister Dharmendra Pradhan, which the CJP has termed as a non-negotiable demand. The other two demands are compensating the families of the Nir suicide victims and withdrawing FIR against peaceful protesters. The government is likely to respond to the resignation demand in today's meeting. Sources, however, tell NDTV that Pradhan's resignation is not on the cards, with the government focusing on revamping the NTA instead. The ruling party, sources say, has said, stands firmly with Dharmendra Pradhan.
3: About Dr. Pradhan, now, of course, we spoke with them. We told them that this is non-negotiable. It's not about the CJP or Sonamji or any one individual. This movement is about accountability. That is what people have most resonated with. And the entire country, wherever these protests are happening, they have a single point demand that Dharmendra Pradhan has to accept accountability and resign or be fired from the cabinet.
4: और पांच सुधार के दृष्टि से परीक्षा के लिए चुनाव नहीं, हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा
1: Well, 5 days after the first violent clashes in Delhi, the fallout still continues. Protesters and police personnel have both paid a heavy price, and the tension refuses to die down. The police now continue to face allegations of excessive force, with Rahul Gandhi presenting a young man who claims he suffered pellet injuries. At the same time, the police say that they've also come under repeated attack over the past couple of days, with multiple FIRs registered and scores of security personnel injured. Around 60 protesters were also injured in the July 20th clashes. The bigger question, however, remains, who is fueling these confrontations and why does the cycle keep on repeating? To understand what happened on ground, Managing Editor Padmaja Joshi spoke to two police officers injured in the clashes with the protesters. Listen into the conversation.
5: मैं आपसे शुरुआत करती हूँ प्रदीप जी, ये बताइए कि ज्यादातर तो लोग को लगा था कि जो भी हिंसा हुई थी 20 तारीख को ही हुई थी, 21 तारीख को आपको चोट कैसे लगी? पहले ये बताइए आपको चोट लगी क्या है?
6: 21 तारीख को करीब शाम को 8:30 बजे हम लोग मैम कौसा रोड पर जंतर मंतर के पास खड़े थे और वहां पर मैम कुछ गैदरिंग 700-800 लोगों की थी और मैम देवर मूविंग टुवर्ड्स अपना संसद मार्ग और वहां पर जो है हमारे ऑफिसर्स और हमने जो है उन लोगों को रोकने की कोशिश की भाई कि आप लोग जो है इस आगे मूव मत कीजिए और उनको समझाते हुए आपस में बातचीत करते हुए कुछ लोग उसमें अग्रेसिव हो गए मैम और उन लोगों ने हमारे पर अटैक किया।
5: किस तरीके से अटैक किया? आपको ये चोट जो लगी है सर पे कैसे लगी है?
6: उसमें कई तरह के एलिमेंट्स है मैम, उसमें पथराव भी हुए हैं, बॉटल भी फेंकी गई है, कुछ मतलब शार्प है चीजें भी फेंकी गई है। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे क्या लगा, बट मैम जो है कोई शार्प है वेपन था बिकॉज मैम चार टाके लगे और आंख के ऊपर जो है मैम काफी गहरी चोट।
5: आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके के लोग थे, क्योंकि पुलिस में आपको एक अंदाजा होता है और ये बात भी सच है कि जब मैं जंतर मंतर गई थी तो वहां पर कई मुझे ऐसे बच्चे जो जेन्युइन बच्चे हैं वो दिखे थे, जो वहां पर अपना एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, जो वहां पर गाना गा रहे थे, झंडा पकड़े हुए थे, पर एक साइड ये भी है कि कुछ उपद्रवी थे। क्या बैकग्राउंड के लोग आपको ये लग रहे थे? क्या उम्र क्या होगी, बैकग्राउंड क्या होगा, कुछ बताएंगे?
6: एज ग्रुप हर किस्म के थे, बच्चे ही थे और उसके अंदर में मिक्स एज ग्रुप के लोग थे और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ही नहीं थे, बहुत से एलिमेंट्स थे मैम और जो उनका बिहेवियर था और वो मैं सडनली कह सकता हूँ कि वो स्टूडेंट्स का नहीं था। पीएलयू स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हमने ड्यूटी कर रखी है, हर जगह हम लोग जाते हैं और स्टूडेंट्स कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते और नहीं करते, तो एज पर माई नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मैम देवर नो स्टूडेंट्स।
5: एनके सिंह जी आप बताइए फिर 22 तारीख को आपके साथ क्या हुआ, अमूमन कितने बजे होगा, आप क्या कर रहे थे, झड़प शुरू कैसे हुई?
7: मैं मेरी नाइट ड्यूटी थी, 8 बजे के करीब मुझे जगह नहीं मिली कहीं पर भी, तो गाड़ी मैंने हनुमान मंदिर रोड पर लगाई जो कनॉट प्लेस थाने के साथ में है रोड, वहां से मैं पैदल पैदल निकलते हुए जंतर मंतर की तरफ आ रहा था। तो जैसे ही संसद मार्ग पर मैं पहुंचा तो वहां पर काफी भीड़ थी, तो मुझे लगा स्टूडेंट्स हैं सब लोग, तो मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मैं चलने लगा। चलते चलते थोड़ा जो बीच में चलने लगा तो पीछे से कोई शाउट कर रहा था, मोदी की पुलिस आगे मारो इसे, मोदी की पुलिस आगे मारो इसे, तो धक्का मुक्के स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा भाई आप स्टूडेंट्स हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन वो फिर कह रहे ठीक है आप चलिए, फिर मैं और चलने लगा, फिर पीछे से लात मारने लगे, गुस्से मारने लगे, दे वर एग्रेसिव, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया, मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, मैं थोड़ा भागा उनसे, फिर मुझे वो लाठी डंडे और किसी के हाथ में शायद वो शार्प एज वेपन्स थे कुछ ना, शायद चाकू जैसे कुछ या ब्लेड टाइप के, उन्होंने सर में मारना स्टार्ट कर दी। 3-4 जगह मुझे इंजरी आई है और हेलमेट वगैरह कुछ मारा उन्होंने, घूसे मारे मेरी आंखों आंख पे भी लगी है मैम यहाँ पर ना, आप देखेंगे काफी, तो पूरी बॉडी में उन्होंने फिर मुझे घेर कर, करीब 150-200 लोग थे जिन्होंने मतलब मुझे लगता है जान से मारने के लिए सोचा हुआ था कुछ इस तरह से, उन्होंने पहले से प्री प्लान मैनर था उनका मैम, दे हैड मतलब उनके पास हर तरह के वेपन्स थे, उनके पास कुछ भी जो भी बेल्ट वगैरह इस तरह से कुछ भी उनके पास जो भी हाथ में था उसे मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे मैम दूर से भी।
5: आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं या कुछ अराजक तत्व, कुछ बाहरी तत्व मिले हुए हैं? क्योंकि अब जंतर मंतर में जितना मैंने देखा है कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब एक तो आपको सेट दिखाई देता है बच्चों का और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या मकसद है, आपका क्या एनालिसिस है, कौन किस तरीके के लोग थे?
7: मैम ये जो इनकी एज ग्रुप था ये 20-35 साल की उम्र के सब लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स हैं सब लोग ना, जो प्रोटेस्ट अंदर कर रहे हैं जंतर मंतर धरना एरिया में, और ये बाहर जो है सब बराबर ही होंगे। मेरी ड्यूटी पहले भी वहां लगी है जंतर मंतर धरना एरिया में, तो ऐसा वहां पे कोई व्यवहार नहीं करता, सब लोग प्यार से व्यवहार करते हैं। तो मैं उनके बीच में सोचा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई झगड़ा तो है नहीं हमारा उनसे, हम भी एक आम जनता ही होते हैं, वो भी हमारे बच्चे ही हैं। तो मैं तो सिर्फ उनके इस तरह सोच के ही मैं वहां से निकल रहा था। तो लेकिन वो तो प्री प्लान मैनर में थे मैम, अगर अगर ये स्टूडेंट्स होते तो ये धरना एरिया में जाकर कुछ बात करते ना मैम, इनको अपना कुछ बोलना था वहां बताते जाकर। ये बाहर सारे 2,500-3,000 लोग बाहर हैं, ये वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, सीआरपीएफ वाले, आरपीएफ वाले, दिल्ली पुलिस, जो भी इनको वर्दी में मिले, इनको कहीं से आदेश मिल रहा है कि मारो इनको, मार के कुछ दिल्ली में अराजकता फैलाओ, वॉयलेंस फैलाओ, इस टाइप से कुछ इनको आदेश मिला हुआ है।
1: With that, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us on the broadcast.
8: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
9: Really?
8: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
10: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
11: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
12: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
13: Gender parity to be reflected while we choose leadership as well.
14: It's also important that how they are reshaping the industries.
15: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
10: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
16: So many attacks.
10: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
16: It's incredible.
10: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
16: Welcome to Left, Right and Center.
10: Hard facts.
16: War-struck country.
10: Hard questions.
16: In the Ukraine.
10: 30 years of trust.
17: In the Kargil area.
16: North Ukraine.
18: In France. In Italy.
16: At Srinagar.
18: I am Iskandar.
16: Vishnu Shom for NDTV.
10: Vishnu Shom. Only on NDTV. India is at a 2030 turning point. EVs, hybrids, biofuels or hydrogen. What fuel wins where? Join top auto CEOs, policy experts and industry titans at the NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026.
19: Where do you need charging infrastructure? You need it on highways.
10: Catch the exclusive coverage only on NDTV.
20: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
21: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
22: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
23: Hello and welcome to Watch and Prime 5. Me, Aisha Sehgal.
22: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic.

अगले दिन मैंने इसके लिए उम्मीद की और आए भी लोग यहाँ पर, मगर अगले दिन सांसद आए कोई 15 से 20।

0: 21 तारीख को करीब शाम को 8:30 बजे हम लोग मैम कौसर रोड पर जंतर मंतर के पास खड़े थे, और वहां पर मैम कुछ गैदरिंग 700-800 लोगों की थी, और मैम देवर मूविंग टुवर्ड्स अपना संसद मार्ग, और वहां पर जो है हमारे ऑफिसर्स और हमने जो है उन लोगों को रोकने की कोशिश की भाई कि आप लोग जो है इस आगे मूव मत कीजिए, और उनको समझाते हुए आपस में बातचीत करते हुए कुछ लोग उसमें अग्रेसिव हो गए मैम, और उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर।
1: किस तरीके से अटैक किया आपको? ये चोट जो लगी है सर पे कैसे लगी है?
0: उसमें कई तरह के एलिमेंट्स थे मैम, उसमें पथराव भी हुए हैं, बॉटल भी फेंकी गई है मैम, कुछ मतलब शार्प है चीजें भी फेंकी गई हैं। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे क्या लगा, बट मैम जो है कोई शार्प है वेपन था, बिकॉज मैम चार टाके लगे और आंख के ऊपर जो है मैम काफी गहरी चोट।
1: आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके के लोग थे, क्योंकि पुलिस में आपको एक अंदाजा होता है। और ये बात भी सच है कि जब मैं जंतर मंतर गई थी तो वहां पर कई मुझे ऐसे बच्चे जो जेन्युइन बच्चे हैं वो दिखे थे, जो वहां पर अपना एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, जो वहां पर गाना गा रहे थे, झंडा पकड़े हुए थे। पर एक साइड ये भी है कि कुछ उपद्रवी थे। क्या बैकग्राउंड के लोग आपको ये लग रहे थे? क्या उम्र क्या होगी, बैकग्राउंड क्या होगा, कुछ बताएंगे?
0: मैम एज ग्रुप हर किस्म के थे, बच्चे ही थे और उसके अंदर मैम मिक्स एज ग्रुप के लोग थे, और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ही नहीं थे, बहुत से एलिमेंट्स थे मैम, और जो उनका बिहेवियर था और वो मैं सडनली कह सकता हूँ कि वो स्टूडेंट्स का नहीं था, बिहेवियर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हमने ड्यूटी कर रखी है, हर जगह हम लोग जाते हैं और स्टूडेंट्स कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते और ना ही करते, तो एज पर माई नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मैम देवर नो स्टूडेंट्स।
1: एनके सिंह जी, आप बताइए फिर 22 तारीख को आपके साथ क्या हुआ? अमूमन कितने बजे होगा, आप क्या कर रहे थे, झड़प शुरू कैसे हुई?
2: मैम मैं मेरी नाइट ड्यूटी थी 8 बजे के करीब, मुझे जगह नहीं मिली कहीं पर भी, तो गाड़ी मैंने हनुमान मंदिर रोड पर लगाई जो कनॉट प्लेस थाने के साथ में है रोड, वहां से मैं पैदल पैदल निकलते हुए जंतर मंतर की तरफ आ रहा था, तो जैसे ही संसद मार्ग पर मैं पहुंचा तो वहां पर काफी भीड़ थी, तो मुझे लगा स्टूडेंट्स हैं सब लोग, तो मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मैं चलने लगा, चलते चलते थोड़ा जो बीच में चलने लगा तो पीछे से कोई शाउट कर रहा था मोदी की पुलिस आगे मारो इसे, मोदी की पुलिस आगे मारो इसे, तो धक्का मुक्के स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा भाई आप स्टूडेंट्स हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर कह रहे ठीक है आप चलिए, फिर मैं और चलने लगा, फिर पीछे से लात मारने लगे, गुस्से मारने लगे, दे वर एग्रेसिव, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया, मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, मैं थोड़ा भागा उनसे, फिर मुझे वो लाठी डंडे और किसी के हाथ में शायद वो शार्प एज वेपन्स थे कुछ ना, शायद चाकू जैसे कुछ या ब्लेड टाइप के, उन्होंने सर में मारना स्टार्ट कर दी, 3-4 जगह मुझे इंजरी आई है, और हेलमेट वगैरह कुछ मारा उन्होंने, घूंसे मारे मेरी आंखों आंख पे भी लगी है मैम यहाँ पर ना, आप देखेंगे काफी, तो पूरी बॉडी में उन्होंने फिर मुझे घेर कर, करीब 150-200 लोग थे जिन्होंने मतलब मुझे लगता है जान से मारने के लिए सोचा हुआ था कुछ इस तरह से, उन्होंने पहले से प्री प्लान मैनर था उनका मैम, दे हैड मतलब उनके पास हर तरह के वेपन्स थे, उनके पास कुछ भी जो भी बेल्ट वगैरह इस तरह से कुछ भी उनके पास जो भी हाथ में था उसे मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे मैम दूर से भी।
1: आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं या कुछ अराजक तत्व, कुछ बाहरी तत्व मिले हुए हैं? क्योंकि अब जंतर मंतर में जितना मैंने देखा है कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब एक तो आपको सेट दिखाई देता है बच्चों का, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या मकसद है। आपका क्या एनालिसिस है, कौन किस तरीके के लोग थे ये?
2: मैम ये जो इनकी एज ग्रुप था ये 20 से 35 साल की उम्र के सब लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स हैं सब लोग ना, जो प्रोटेस्ट अंदर कर रहे हैं जंतर मंतर धरना एरिया में, और ये बाहर जो है सब बराबर ही होंगे, मेरी ड्यूटी पहले भी वहां लगी है जंतर मंतर धरना एरिया में, तो ऐसा वहां पे कोई व्यवहार नहीं करता, सब लोग प्यार से व्यवहार करते हैं, तो मैं उनके बीच में सोचा कोई बात दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई झगड़ा तो है नहीं हमारा उनसे, हम भी एक आम जनता ही होते हैं, वो भी हमारे बच्चे ही हैं, तो मैं तो सिर्फ उनके इस तरह सोच के ही मैं वहां से निकल रहा था, तो लेकिन वो तो प्री प्लान मैनर में थे मैम, अगर अगर ये स्टूडेंट्स होते तो ये धरना एरिया में जाकर कुछ बात करते ना मैम, इनको अपना कुछ बोलना था वहां बताते जाकर। ये बाहर सारे 2,500-3,000 लोग बाहर हैं, ये वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, सीआरपीएफ वाले, आरपीएफ वाले, दिल्ली पुलिस, जो भी इनको वर्दी में मिले, इनको कहीं से आदेश मिल रहा है कि मारो इनको, मार के कुछ दिल्ली में अराजकता फैलाओ, वॉयलेंस फैलाओ, इस टाइप से कुछ उनको आदेश मिला हुआ है।
3: With that, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us on the broadcast.
4: This is India Inc.'s Roll of Honor, recognizing the leaders shaping India's growth story, where ambition, enterprise, and excellence meet. In the presence of the Finance Minister, Nirmala Sitharaman. NDTV Profit Business Leadership Awards, 26 July, on the NDTV Network.
5: Launch control, 0 to 100.
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
7: This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
9: Your friend said, "Yeh le le." We said, maybe not.
10: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
4: They built, they led, they redefined the business conversation. Now, India Inc.'s finest take center stage. Who will win the NDTV Profit Business Leadership Awards, 26 July? On the NDTV Network. From the newsroom to the studio to the thick of political action.
11: You're watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
4: When stories have impact.
12: Padmasar Joshi, managing editor and prime time anchor.
4: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
11: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
13: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
14: Really?
13: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
4: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
15: I'm delighted to be a chairman of such distinct.
3: Welcome back to Sarit Kaur Sahani and you're watching NDTV. Well, some breaking news coming in at this hour. Let's take you through it. The US President Donald Trump has issued a fresh warning to Iran. Trump in his warning has said that US is locked and loaded on Iran. He's even gone on to say that we can step up strikes on Iran and that serious talks are now underway with Iran. Now, an important update coming in is the US President says that Iran wants a deal but is not ready for one yet. Let's also listen into the reactions coming in.
16: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy, and that's you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet, but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys, but they do want to make a deal. There's two ways. I mean, it's you can just keep doing exactly what we're doing and take them apart piece by piece. We could do it in a more rapid fashion, which we might do, or we can

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
3: दिस काइंड ऑफ अवार्ड्स एंड ज्यूरी लाइनअप, यू आर ट्रूली गिविंग इट द राइट वेटेज।
4: आई थिंक इट्स हार्टनिंग टू सी टैलेंट दैट देयर इज इन across India Inc.
5: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
6: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
7: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
8: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
9: We've got a fantastic jury. And we've left all decisions to the wisdom of the jury.
2: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
10: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
11: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
12: अरे मेरे राजा,
13: सबका राजा आर्द्र मसाला।
1: This is India Inc's Roll of Honor, recognizing the leaders shaping India's growth story, where ambition, enterprise and excellence meet. In the presence of the Finance Minister, Nirmala Sitharaman. NDTV Profit Business Leadership Awards, 26 July on the NDTV Network.

0: नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज India Inc.'s best and brightest.
2: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
3: I think it's heartening to see talent that there is across India Inc.

0: The CJP delegation and the CJP leadership is on its stance, firmly standing that they want the resignation and the dismissal of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. How, if that does not happen, there is no such point of any of these meetings that have been happening over this week, the three meetings that have taken place. So this is what they have to say. They are expecting any movement, any decision with regards to Dharmendra Pradhan's resignation. On the other hand, we have the government and the sources within the government confirming that there is no resignation that is going to take place. Back to
1: all right, Soumya, thank you so much for joining us and sharing those important updates with us. Let's take you through more developments taking shape at this hour. Now, Sonam Wangchuk has released a fresh video clarification, saying that his fast was never primarily about Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation. He says his biggest concern was protecting students from FIRs and legal action, while insisting that the government was already facing enough political pressure over the resignation issue. Wangchuk now says that he ended his fast only after receiving reassurances that no action would be taken against the protesters and compensation would be considered. He adds that the decision was taken to prevent violence and even maintain peace, and even ensure that students will in fact remain protected, not because the resignation demand had been dropped.
2: Tuesday ko order ke baad raat ko main yahan Gurgaon ke हॉस्पिटल वेदांता हॉस्पिटल में पहुंचा और उसी रात देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी आए. मुझे बताया गया इस एजेंसी के अफसरों ने कि वो आ रहे हैं कुछ बात करने, और फिर आए और उन्होंने कहा कि आप अनशन तोड़िएगा, हम चाहते हैं अनशन आपका न रहे वगैरह वगैरह. मैंने उन्हें कहा कि मैं यूं ही तोड़ने के लिए तो बैठा नहीं हूं, शर्तें होंगी उनको आप माने तो मैं अनशन तोड़ भी दूंगा. तो शर्तें पूछी गई हमसे, मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन. वैसे ही मैंने कहा जो छात्र हैं सुसाइड विक्टिम्स उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए, पार्लियामेंट में इस इशू पर और अकाउंटेबिलिटी पर पूरा बहस किया जाए. और एक नया हमने जोड़ा कि जो भी छात्र सीजेपी के और बाकी उनके लीडरशिप जिन्होंने प्रदर्शन किया है पीसफुली जंतर मंतर पर और फिर 20 मार्च को संसद मार्च किया, उनमें से किसी पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाएंगे, एफआईआर नहीं किए जाएंगे, तब मैं ये अनशन तोड़ूंगा. तो उन्होंने एक दो को तो मानने की रजामंदी जाहिर की, दो तीन पर वो पूछ के बताएंगे ऐसा कहा और फिर वो चले गए. अगले दिन शायद वो आएंगे ऐसा मुझे बताया गया था कि आप तोड़िएगा, हम इस पे बात करके आएंगे और हम आपको अनशन तोड़वाएंगे. मगर मैं नहीं चाहता था कि मैं अनशन उनके हाथों तोड़ूँ, केंद्रीय मंत्रियों के हाथों. इसीलिए मैंने मांग की कि जो हमारे अलग अलग दलों के राजनीतिक दलों के सांसद हैं वो सब जितने आ सकें आएं, और फिर हमारे छात्र नेता सीजेपी के आएं, और लद्दाख के जो नेता लद्दाख से यहाँ आए थे वो आएं, और उन सब के उपस्थिति में मैं अनशन तोड़ूं.
1: Let's take you through more updates coming in at this hour. Now, government sources tell NDTV that Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is not on the cards. According to government sources, the centre believes that quitting would be the easiest decision, while responsibility lies in staying and fixing the system. Government sources say that a list of problems within the NTA is being prepared for reforms. Several paper league gangs have also been busted. More action is likely in the pipeline, and the party continues to stand firmly behind the minister. However, what's important to note is the fact that the government's position stands in sharp contrast to the demands made by the students. While protesters now seek Dharmendra Pradhan's resignation, the government says that the focus is on fixing the system rather than changing the minister. Meanwhile, a logjam is expected to continue in the parliament as opposition is hell-bent upon Dharmendra Pradhan's resignation.
3: आज दिन तक पार्लियामेंट में नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए. हम तो आज भी फिर से अपील किया है तो अभी जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने लिया है उसका ब्रीफिंग हमारा आईन भी मंत्री जी ब्रीफिंग करेंगे। हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। अब तो कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली
4: रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है, जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा, उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कंडीशंस। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन एनी डिस्कशन बिफोर मिस्टर प्रधान इज सैक्ड।
1: Well, less than 24 hours since Prime Minister Modi made his late night appeal to protesters, vowing strict action on the paper leak issue, the series of major decisions taken by the government still continues. While the government has already notified fast-track courts on the paper leaks issue and has transferred the Education Secretary, the cabinet yesterday in fact even approved a new bill with more stringent punishment for the paper leakers. In the latest, the NTA is undergoing an overhaul. 47 NTA employees are now being terminated. 4 new general manager positions have now been notified, and in fact 16 young professionals are now going to be hired with further recruitment across 10 verticals. NTA is also set to get a new chief information security officer to oversee cyber security and a new chief of vigilance to oversee malpractice and coordinate with the CBI, ED and the police. 5 days after the first violent clashes in Delhi, the fallout still continues. Protesters and police personnel have now both paid a heavy price, and the tension refuses to die down. The police continue to face allegations of excessive force, with Rahul Gandhi presenting a young man who claims he suffered a pellet injury. At the same time, the police say that they have come under repeated attack over the past couple of days, with multiple FIRs registered and scores of security personnel injured. Around 60 protesters were also injured in the July 20th clashes. But the bigger question remains, who is felling these confrontations and why does the cycle keep repeating itself? To understand what happened on ground, Managing Editor Padmaja Joshi has spoken to the two police officers who were injured during the clashes with the protesters. Listen to the conversation.
5: मैं आपसे शुरुआत करती हूँ प्रदीप जी, ये बताइए कि ज्यादातर तो लोग को लगा था कि जो भी हिंसा हुई थी 20 तारीख को ही हुई थी, 21 तारीख को आपको चोट कैसे लगी? पहले ये बताइए आपको चोट लगी क्या है?
6: 21 तारीख को करीब शाम को 7:30 बजे हम लोग मैम टॉसर रोड पर जंतर मंतर के पास खड़े थे और वहां पर मैम कुछ गैदरिंग 700-800 लोगों की थी और मैम देवर मूविंग टुवर्ड्स अपना संसद मार्ग और वहां पर जो है हमारे ऑफिसर्स और हमने जो है उन लोगों को रोकने की कोशिश की भाई कि आप लोग जो है इस आगे मूव मत कीजिए और उनको समझाते हुए आपस में बातचीत करते हुए कुछ लोग उसमें अग्रेसिव हो गए मैम और उन लोगों ने हमारे पर अटैक किया।
5: किस तरीके से अटैक किया? आपको ये चोट जो लगी है सर पे कैसे लगी है?
6: उसमें कई तरह के एलिमेंट्स है मैम, उसमें पथराव भी हुए हैं, बॉटल भी फेंकी गई है, मैम कुछ मतलब शार्प है चीजें भी फेंकी गई है। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे क्या लगा, बट मैम जो है कोई शार्प वेपन था बिकॉज मैम चार टाके लगे और आंख के ऊपर जो है मैम काफी गहरी चोट।
5: आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके के लोग थे, क्योंकि पुलिस में आपको एक अंदाजा होता है और ये बात भी सच है कि जब मैं जंतर मंतर गई थी तो वहां पर कई मुझे ऐसे बच्चे जो जेन्युइन बच्चे हैं वो दिखे थे, जो वहां पर अपना एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, जो वहां पर गाना गा रहे थे, झंडा पकड़े हुए थे। पर एक साइड ये भी है कि कुछ उपद्रवी थे। क्या बैकग्राउंड के लोग आपको ये लग रहे थे, क्या उम्र क्या होगी, बैकग्राउंड क्या होगा, कुछ बताएंगे?
6: एज ग्रुप हर किस्म के थे, बच्चे ही थे और उसके अंदर में मिक्स एज ग्रुप के लोग थे, और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ही नहीं थे, बहुत से एलिमेंट्स थे मैम, और जो उनका बिहेवियर था और वो मैं सडनली कह सकता हूँ कि वो स्टूडेंट्स का नहीं था, बिहेवियर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हमने ड्यूटी कर रखी है, हर जगह हम लोग जाते हैं और स्टूडेंट्स कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते और ना ही करते, तो एज पर माई नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मैम दे वर नॉट स्टूडेंट्स।
5: एनके सिंह जी आप बताइए फिर 22 तारीख को आपके साथ क्या हुआ, अमूमन कितने बजे होगा, आप क्या कर रहे थे, झड़प शुरू कैसे हुई?
7: मैम मैं मेरी नाइट ड्यूटी थी 8 बजे के करीब, मुझे जगह नहीं मिली कहीं पर भी, तो गाड़ी मैंने हनुमान मंदिर रोड पर लगाई जो क्राउड प्लेस थाने के साथ में है रोड, वहां से मैं पैदल पैदल निकलते हुए जंतर मंतर की तरफ आ रहा था, तो जैसे ही संसद मार्ग पर मैं पहुंचा तो वहां पर काफी भीड़ थी, तो मुझे लगा स्टूडेंट्स हैं सब लोग, तो मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मैं चलने लगा, चलते चलते थोड़ा जो बीच में चलने लगा तो पीछे से कोई शाउट कर रहा था मोदी की पुलिस आगे मारो इसे, मोदी की पुलिस आगे मारो इसे, तो धक्का मुक्के स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा भाई आप स्टूडेंट्स हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर कह रहे ठीक है आप चलिए, फिर मैं और चलने लगा, फिर पीछे से लात मारने लगे, गुस्से मारने लगे, दे वर एग्रेसिव, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया, मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, मैं थोड़ा भागा उनसे, फिर मुझे वो लाठी डंडे और किसी के हाथ में शायद वो शार्प एज वेपन्स थे कुछ ना, शायद चाकू जैसे कुछ या ब्लेड टाइप के, उन्होंने सर में मारना स्टार्ट कर दी, 3-4 जगह मुझे इंजरी आई है, और हेलमेट वगैरह कुछ मारा उन्होंने, घूसे मारे मेरी आंख पे भी लगी, मैं यहाँ पर ना आप देखेंगे काफी, तो पूरी बॉडी में उन्होंने फिर मुझे घेर कर, करीब 150-200 लोग थे जिन्होंने मतलब मुझे लगता है जान से मारने के लिए सोचा हुआ था कुछ इस तरह से, उन्होंने पहले से प्री प्लान मैनर था उनका मैम, दे हैड मतलब उनके पास हर तरह के वेपन्स थे, उनके पास कुछ भी जो भी बेल्ट वगैरह इस तरह से कुछ भी उनके पास जो भी हाथ में था उसे मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे मैम दूर से भी।
5: आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं या कुछ अराजक तत्व, कुछ बाहरी तत्व मिले हुए हैं, क्योंकि अब जंतर मंतर में जितना मैंने देखा है कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब एक तो आपको सेट दिखाई देता है बच्चों का और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या मकसद है, आपका क्या एनालिसिस है, कौन किस तरीके के लोग थे?
7: मैम ये जो इनकी एज ग्रुप था ये 20 से 35 साल की उम्र के सब लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स हैं सब लोग ना, जो प्रोटेस्ट अंदर कर रहे हैं जंतर मंतर धरना एरिया में, और ये बाहर जो है सब बराबर ही होंगे, मेरी ड्यूटी पहले भी वहां लगी है जंतर मंतर धरना एरिया में, तो ऐसा वहां पे कोई व्यवहार नहीं करता, सब लोग प्यार से व्यवहार करते हैं, तो मैं उनके बीच में सोचा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई झगड़ा तो है नहीं हमारा उनसे, हम भी एक आम जनता ही होते हैं, वो भी हमारे बच्चे ही हैं, तो मैं तो सिर्फ उनके इस तरह सोच के ही मैं वहां से निकल रहा था। तो लेकिन वो तो प्री प्लान मैनर में थे मैम, अगर अगर ये स्टूडेंट्स होते तो ये धरना एरिया में जाकर कुछ बात करते ना मैम, इनको अपना कुछ बोलना था वहां बताते जाकर, ये बाहर सारे 2,500-3,000 लोग बाहर हैं, ये वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, सीआरपीएफ वाले, आरपीएफ वाले, दिल्ली पुलिस, जो भी इनको वर्दी में मिले, इनको कहीं से आदेश मिल रहा है कि मारो इनको, मार के कुछ दिल्ली में अराजकता फैलाओ, वॉयलेंस फैलाओ, इस टाइप से कुछ इनको आदेश मिला हुआ है।
1: What recent breaking news coming in from the national capital? Let's take you through it. We're learning some devastating information come to light where a student has been killed after a car plunged into a drain near Vasant Kunj in New Delhi. A 20-year-old student pursuing higher education in the United States has tragically been killed after he drove his car into a drain, losing control at a sharp turn. That's the latest we're learning at this hour. Yashvendra was the son of an Indian Army officer, as per the police. A female friend who was travelling with him, whose car it was, also sustained injuries in the accident. Let's also listen into the reactions coming in on this.
8: करीबन 5:50 की बात है, मैं एक ऑर्डर लेके आ रहा था, गाड़ी ना बहुत रफ्तार में थी, वो गड्ढा बचाने की वजह से उसने ना स्टीयरिंग को हिलाया तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, ब्रेक लगा नहीं तो सीधा गाड़ी वहाँ से टकराया और पूरा पलटी मारने के कारण इसमें घुस गया। वो तीन लोग थे जो कि एक आगे चला रहा था, दो पीछे बैठे थे, दो तो पीछे अचानक से वो बाहर निकल गए गड्ढे में गिरने के कारण, और जो आगे बैठा था उसने सीट बेल्ट ना लगाने के कारण वो ऑन द स्पॉट निकल भी नहीं पाया और उसको बहुत ज़्यादा चोट भी लग गई। अब बचा नहीं बचा ये तो हॉस्पिटल वाले ही बताएंगे।
0: A 20-year-old man named Yashvendra, the son of an Indian Army officer, died in a fatal accident yesterday here in Vasankuj area yesterday. Behind me is the very car in question. It is being told that the PCR got a call earlier yesterday in the morning. This car was driven by Yashvendra himself. The car belongs to his friend, a female friend who also was in the car while he was driving. The car belonged to her. She's also a resident of Vasankunj area. It is being told that they were taking a right turn from Nangal Devat red light area. The turn was subsequently a sharp turn, and because of the slippery road, Yashvendra lost the control of the car. And eventually they fell into this pit and it overturned. The friend tells that he suffered severe injuries and later on succumbed to it. The police got the call, the PCR got the call, and they came at the spot. At this moment they recorded the statement of the female friend, and now investigations are underway. It is being said that both of them are friends. They were pursuing their higher education from the United States. Just day before yesterday, they were at a friend's place here in Vasankunj area only, and Yashvendra was driving this car earlier yesterday in the morning, and he was on his way to drop his female friend at his residence when this fatal accident took place, wherein he suffered severe injuries and succumbed to those injuries.
1: Let's now take you to Assam, where more developments are taking shape at this hour. An important update coming in, as we're learning that there has been, of course, heavy rains that have triggered severe flooding all across Assam, with the Sivasagar among the worst hit districts. Hundreds of families remain stranded as villages, roads and vehicles are completely submerged. Here's a roundup of the latest developments. Let's take you through it. Severe flooding in Assam's Sivasagar district has left residents stranded on rooftops after heavy rains and overflowing rivers submerged entire villages. Cars, scooters and motorcycles are submerged under flood waters. The village temple has also been devastated, and residents are surviving on upper floors and rooftops as floods continue to wreak havoc in Sivasagar. Amid the devastating floods in Upper Assam, a remarkable act of solidarity has now emerged. Residents in the Salmora in Majuli have voluntarily sent traditional country boats to neighbouring Sivasagar, helping rescue teams reach people in flood-stranded areas. Several roads in Guwahati remain submerged after heavy rainfall, bringing traffic to a standstill and causing massive congestion across the city. On that note, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us on the broadcast.

0: Well, 5 days after the first violent clashes in Delhi, the fallout continues. Protesters and police personnel have both paid a heavy price, and the heavy tensions refuse to die down. The police continues to face allegations of excessive force, with Rahul Gandhi presenting a young man who claims he suffered pellet injuries.
1: मैं आपसे शुरुआत करती हूँ प्रदीप जी, ये बताइए कि ज़्यादातर तो लोग को लगा था कि जो भी हिंसा हुई थी 20 तारीख को ही हुई थी, 21 तारीख को आपको चोट कैसे लगी? पहले ये बताइए आपको चोट लगी क्या है?
2: हम 21 तारीख को करीब शाम को 7:30 बजे हम लोग मैम टॉस रोड पर जंतर मंतर के पास खड़े थे और वहां पर मैम कुछ

0: 700 800 लोगों की थी। और मैम देवर मूविंग टुवर्ड्स अपना संसद मार्ग, और वहां पर जो है हमारे ऑफिसर्स और हमने जो है उन लोगों को रोकने की कोशिश की भाई कि आप लोग जो है इस आगे मूव मत कीजिए, और उनको समझाते हुए आपस में बातचीत करते हुए कुछ लोग उसमें अग्रेसिव हो गए मैम, और उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया।
1: किस तरीके से अटैक किया आपको? ये चोट जो लगी है सर पे कैसे लगी है?
0: उसमें कई तरह के एलिमेंट्स थे मैम, उसमें पथराव भी हुए हैं और बॉटल भी फेंकी गई हैं मैम, कुछ मतलब शार्प है चीजें भी फेंकी गई हैं। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे क्या लगा, बट मैम जो है कोई शार्प है वेपन था, बिकॉज मैम चार टाके लगे और आंख के ऊपर जो है मैम काफी गहरी चोट।
1: आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके के लोग थे, क्योंकि पुलिस में आपको एक अंदाजा होता है। और ये बात भी सच है कि जब मैं जंतर मंतर गई थी तो वहां पर कई मुझे ऐसे बच्चे जो जेन्युइन बच्चे हैं वो दिखे थे, जो वहां पर अपना एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, जो वहां पर गाना गा रहे थे, झंडा पकड़े हुए थे। पर एक साइड ये भी है कि कुछ उपद्रवी थे। क्या बैकग्राउंड के लोग आपको ये लग रहे थे? क्या उम्र क्या होगी, बैकग्राउंड क्या होगा, कुछ बताएंगे?
0: एज ग्रुप हर किस्म के थे, बच्चे भी थे और उसके अंदर में मिक्स एज ग्रुप के लोग थे। और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ही नहीं थे, बहुत से एलिमेंट्स थे मैम, और जो उनका बिहेवियर था और वो मैं सडनली कह सकता हूँ कि वो स्टूडेंट्स का नहीं था। बिहेवियर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हमने ड्यूटी कर रखी है, हर जगह हम लोग जाते हैं और स्टूडेंट्स कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते और ना ही करते। तो एज पर माई नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मैम देवर नॉट स्टूडेंट्स।
1: एनके सिंह जी, आप बताइए फिर 22 तारीख को आपके साथ क्या हुआ? अमूमन कितने बजे होगा, आप क्या कर रहे थे, झड़प शुरू कैसे हुई?
2: मैम मेरी नाइट ड्यूटी थी 8 बजे के करीब, मुझे जगह नहीं मिली कहीं पर भी, तो गाड़ी मैंने हनुमान मंदिर रोड पर लगाई जो कनॉट प्लेस थाने के साथ में है रोड, वहां से मैं पैदल पैदल निकलते हुए जंतर मंतर की तरफ आ रहा था। तो जैसे ही संसद मार्ग पर मैं पहुंचा तो वहां पर काफी भीड़ थी, तो मुझे लगा स्टूडेंट्स हैं सब लोग, तो मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मैं चलने लगा, चलते चलते थोड़ा जो बीच में चलने लगा तो पीछे से कोई शाउट कर रहा था, मोदी की पुलिस आगे मारो इसे, मोदी की पुलिस आगे मारो इसे। तो धक्का मुक्के स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा भाई आप स्टूडेंट्स हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन वो फिर कह रहे ठीक है आप चलिए। फिर मैं और चलने लगा, फिर पीछे से लात मारने लगे, घूसे मारने लगे, देवर एग्रेसिव, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया, मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, मैं थोड़ा भागा उनसे। फिर मुझे वो लाठी डंडे और किसी के हाथ में शायद वो शार्प एज वेपन्स थे कुछ ना, शायद चाकू जैसे कुछ या ब्लेड टाइप के, उन्होंने सर में मारना स्टार्ट कर दी। 3 4 जगह मुझे इंजरी आई है और हेलमेट वगैरह कुछ मारा उन्होंने, घूसे मारे मेरी आंखों आंख पे भी लगी है मैंने यहाँ पर ना, आप देखेंगे काफी, तो पूरी बॉडी में उन्होंने फिर मुझे घेर कर, करीब 150 200 लोग थे जिन्होंने मतलब मुझे लगता है जान से मारने के लिए सोचा हुआ था कुछ इस तरह से। उन्होंने पहले से प्री प्लान मैनर था उनका मैम, दे हैड मतलब उनके पास हर तरह के वेपन्स थे, उनके पास कुछ भी जो भी बेल्ट वगैरह इस तरह से कुछ भी उनके पास जो भी हाथ में था उसे मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे मैम दूर से भी।
1: आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं या कुछ अराजक तत्व, कुछ बाहरी तत्व मिले हुए हैं? क्योंकि अब जंतर मंतर में जितना मैंने देखा है कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब एक तो आपको सेट दिखाई देता है बच्चों का, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या मकसद है। आपका क्या एनालिसिस है, कौन किस तरीके के लोग थे ये?
2: मैम ये जो इनकी एज ग्रुप था ये 20 से 35 साल की उम्र के सब लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स हैं सब लोग ना, जो प्रोटेस्ट अंदर कर रहे हैं जंतर मंतर धरना एरिया में, और ये बाहर जो है सब बराबर ही होंगे। मेरी ड्यूटी पहले भी वहां लगी है जंतर मंतर धरना एरिया में, तो ऐसा वहां पे कोई व्यवहार नहीं करता, सब लोग प्यार से व्यवहार करते हैं। तो मैं उनके बीच में सोचा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई झगड़ा तो है नहीं हमारा उनसे, हम भी एक आम जनता ही होते हैं, वो भी हमारे बच्चे ही हैं। तो मैं तो सिर्फ उनके इस तरह सोच के ही मैं वहां से निकल रहा था। तो लेकिन वो तो प्री प्लान मैनर में थे मैम, अगर अगर ये स्टूडेंट्स होते तो ये धरना एरिया में जाकर कुछ बात करते ना मैम, इनको अपना कुछ बोलना था वहां बताते जाकर, ये बाहर सारे 2 2500 3000 लोग बाहर हैं, ये वेट

0: वो तीन लोग थे, जो कि एक आगे चला रहा था, दो पीछे बैठे थे। दो तो पीछे अचानक से वो बाहर निकल गए गड्ढे में गिरने के कारण, और जो आगे बैठा था उसने सीट बेल्ट ना लगाने के कारण वो ऑन द स्पॉट निकल भी नहीं पाया और उसको बहुत ज़्यादा चोट भी लग गई। अब बचा नहीं बचा ये तो हॉस्पिटल वाले ही बताएंगे।
1: तो मैडम ने भी कहा था, पुलिस बाद में आई थी, आधे घंटे बाद आई थी, 5:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था ये। उसकी गाड़ी वहाँ से आई थी, 150 फीट में रेस लगाए थे, दूसरी गाड़ी निकल गई थी।
2: अच्छा, इनने
1: हाँ रेस करे थे, उनने ड्रिंक कर रखी थी।
2: अच्छा।
1: तो यहाँ से टक्कर लगी थी, सीधा अंदर घूम यहाँ पे पेड़ में लगी, सीधा अंदर घुस गई थी। तो लड़का लगी बाहर निकल गए थे, उसका भाई अंदर निकालने की कर रहा था कोशिश में, पर निकल नहीं पाया था। उनको निकालने में आधा घंटा लग गया, क्योंकि पुलिस लेट आई थी, और कैन भी उसके बाद आई थी, कैन नहीं आई टाइम पे।
3: वो पीक था अराउंड वो सुबह मॉर्निंग 6 बजे का, मैं यहाँ से जा रहा था, ठीक है। मेरा रूटीन है 25 साल से मैं जाता हूँ रेगुलर 6 बजे, ठीक है। मेरा स्कूलों में ट्रांसपोर्ट देता हूँ मैं, तो सुबह 6 बजे आई थिंक बच्चे बोल रहे ड्रिंक वगैरह, मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं उसके जो है जब उसको स्पेनमेंट ले गए थे तो अब उसकी बॉडी दे रहे थे, उसकी मदर आई थी तब भी मैं वहीं था, ठीक है। सुबह जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मौके पे पुलिस खड़ी हुई थी, मैंने वीडियो भी बना रखे, वो गाड़ी पलटी हुई थी, तो उस लड़के की जो सीट बेल्ट लगी हुई थी, तो सीट बेल्ट

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: India is at a 2030 turning point. EVs, hybrids, biofuels, or hydrogen. What fuel wins where? Join top auto CEOs, policy experts, and industry titans at the NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026.
6: Where you need charging infrastructure, you need it on highways.
5: Catch the exclusive coverage only on NDTV.
7: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज़।

0: Welcome back. This is the reason you're watching NDTV. From selling vegetables on the streets to winning India's first medal at the Commonwealth Games. An extraordinary journey of grit and determination. In an NDTV exclusive, Jhantu Kumar opens up about his inspiring rise, the struggles behind the success and the moment that changed his life forever. Here's NDTV's Rika Roy's exclusive conversation with a medal-winning champion. Listen in.
1: जंडू जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन. सबसे पहले शुरू करते हैं ये बोलकर कि व्हेन इंडिया वेक्स अप टुमारो मॉर्निंग, आपके मेडल के बारे में सब जानेंगे. आपका पहला रिएक्शन क्या है?
2: मैम, पहला जब हमने पहला वार्म अप कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हमें मतलब कि कुछ अच्छा ही करेंगे. तो हमने पहला अटेम्प्ट हमने किए 181. तो हमें अंदर से और मतलब कि अंदर से फील आया कि हम और भी हम बेहतर कर सकते हैं. जी मैम.
1: फिर 191 आपने उठाया.
2: फिर मैम हमने 91 उठाए. तो उसके बाद हम सोचे कि फिर मतलब अच्छा लगा हमें कि उतना वेट उठाए. हमें लगा कि और बेहतर करेंगे, मगर टेक्निक फॉल्ट थोड़ा सा दिक्कत हो गया सर. मैम,
1: क्या ये एक्सपेक्टेड था ये, या फिर ये अपने आपको आपने सरप्राइज किया है?
2: नहीं नहीं मैम, मतलब कि एक
3: उम्मीद थी मैडम, उम्मीद थी, कंफर्म था,
2: उम्मीद था मैम. हमारा कोच साहब थे तो वो पहले ही से ये प्लान बना रखे थे.
1: झंडू जी, मुझे थोड़ा सा बताइए, 2023 में आपने अपना ई रिक्शा बेचकर नेशनल में दाखिला की, वहां से आपका दौर शुरू हुआ. थोड़ा सा बताइए कैसे आप यहाँ तक आज पोडियम तक पहुंचे.
2: हमने 2016-17 से हमने जिम कर रहे थे, 2016-17 से जिम कर रहे थे, मगर हमें पता नहीं था पैरा पावर लिफ्टिंग के, मतलब पैरा का कोई गेम हमको पता नहीं था. तो हमने 2018-19 में हमको पता चला कि शॉर्ट पुट डिस्कस भी होता है. तब हमने वहाँ के जो होता है बिहार शरीफ का जो सेक्रेटरी होते हैं वो हमें से मिले और हमें बताए कि पैरा पावर लिफ्टिंग भी होता है. और उसके बाद हमने उस चीज को करना स्टार्ट किए धीरे धीरे, मैनेज करते हुए. मतलब सब्जी भी बेचना था हमें और ट्रेनिंग भी करना था हमें. हम खुद से ट्रेनिंग करते थे.
1: जी झंडू जी, आपने बोला कि आपने 2016 में शुरू किया था.
2: हमने 22 में जब हम गए थे कोलकाता खेलने के लिए, तो हमने उस समय 135 का बेंच लगा रहे थे क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था. इसलिए हमने ब्रॉन्ज मेडल हमने पहला ही नेशनल खेले थे अपना बिहार के लिए. बहुत अच्छा लगा हमें और इतना खुशी था मैम कि मतलब कि एक दिन तो सोए थे ही नहीं हम. तो फिर हमने इस चीज का मेहनत हम सोचे कि हम यही करेंगे क्योंकि इसमें बहुत मतलब सर मैम की गर्व होता था अंदर से. लोग हमें बहुत अच्छा से मतलब देखते थे और बहुत सा बात है ना मैम. तो उसके बाद हमने

0: फिर
1: और 2023 में आप अपने ई रिक्शा
0: 2000 मैम हम 2022 में जब हम बिजनेस कर रहे थे तो हमारा दुकान हमारा ओवर ब्रिज में चला गया, मतलब रोड रोड में चला गया वो, तो दुकान बंद हो गया, तो फिर मजबूरी में हमने ई रिक्शा लिए। तो जब हम ये ई रिक्शा चलाने लग रहे थे तो ट्रेनिंग हमारा दिक्कत हो रहा था उसमें करने के, मतलब कि बॉडी हमारा थक जाता था तो ट्रेनिंग हो नहीं पा रहा था। तो फिर 2023 में हमने नेशनल, हाँ 2023 में जब हमारा नेशनल चैंपियनशिप आया मैम, तो फिर हमने रिक्शा को भेज दिए, क्योंकि आर्थिक सपोर्ट के नहीं के कारण होके और हमने भेज दिए उसको।
2: मैडम
1: अब रोड आगे, सवाल ये मेडल आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे?
0: तो ये तो मैम ये तो अपना गार्जियन है, घर वाला, माँ पिताजी, ये सब बहुत मेहनत इसको अति करने के लिए, कोच हो गए, पीसीआई हो गए, और मैम ताई गांधीनगर गुजरात हो गए, वो साहब हो गए, ये सबको हम पूरा ये मतलब
2: ओलंपिक एसोसिएशन
1: दिखा दीजिए आप।
0: ये रहा मैम
2: मैडम दिख रहा है, मेडल दिख रहा है,
1: बिल्कुल, थैंक यू। और
2: ये मेडल ओलंपिक एसोसिएशन, पैरालंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स साई और खेल मंत्रालय सभी को डेडिकेटेड है पूरे देश के लिए। थैंक यू वेरी मच
1: थैंक यू जी।
3: With that, we're sipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: Last night, the Prime Minister again came out on his Instagram. This is his Instagram outreach with yet another video message. According to what we can see this time, he has expressed gratitude to the youth. In the latest video, the Prime Minister reportedly has thanked the youth for their overwhelming support as far as his earlier video, the video that came out 24 hours back on Thursday. The Prime Minister also said that the love and the positive response that he has got, because he's got millions and millions of views, will only make their bond stronger in the days ahead. This comes at a time when students continue their protests and also when the Prime Minister allegedly has instructed his ministers to intensify their outreach on Instagram particularly. And this video is a testimony to the fact that the Prime Minister is leading from the front as far as his outreach on social media platform Instagram is concerned. This is his bit, and that is what he's putting out. This is a thank you message of the Prime Minister to the youth of the country.
1: Thank you, friends. कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा. थैंक यू दोस्तों.
0: That was the Prime Minister thanking, in his typical style, Mitro or friends. Now, government sources are telling NDTV that Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is not going to be discussed if that meeting takes place today in the afternoon at 3 o'clock after the second round that took place yesterday on Friday. According to government sources, the centre believes that quitting would be the easiest decision, while responsibility lies in staying and fixing the system. The government also say a list of problems within the NTA is being prepared for reforms. Several paper league gangs have already been busted. More action is in the pipeline, and the party continues to stand firmly behind the minister. However, the government's position stands in sharp contrast to the demands that are being made and raised by the students. While protesters have sought the resignation of the education minister, government sources say that the focus is basically on fixing the system rather than changing the one responsible or holding the education minister responsible. Meanwhile, the logjam is expected to continue in the parliament as the opposition is hell-bent on the resignation of Dharmendra Pradhan.
2: 5 days तक पार्लियामेंट में नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए. हम तो आज भी फिर से अपील किया है. तो अभी जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने लिया है उसका ब्रीफिंग हमारा आईएन बी मंत्री जी ब्रीफिंग करेंगे. हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए. अब तो कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है. एक्चुअली
3: रिजिजू ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए. अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है. तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है. जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी. मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की. पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो. सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी. और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स. दीज आर द 3 कंडीशंस. वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन, एनी डिस्कशन before Mr. Pradhan is sacked.
0: Now, while Rahul Gandhi is demanding the resignation of Mr. Pradhan, it is the Congress's MP Imran Masood's Anna Part 2 and personal deal with the government remarks about Sonam Wangchuk. That's got the Kokrel Janata Party's national spokesperson saying that we don't know what the Congress is thinking. While they've done a lot, they've negotiated as far as a legal case, they've negotiated as far as the compensation issue is concerned, but it's not right to be questioning Sonam Wangchuk. Let's listen in.
4: उससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है जिस व्यक्ति ने 26 दिन भूख हड़ताल कर ली, अपनी जान जोखिम में डाल दी, मतलब देश के भविष्य के लिए इतना कुछ किया। आप राइट विंग वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको ही आप जो है ट्रोल कर रहे हैं, उससे अगर शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता।
5: के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी उनको कहा कि वो अन्ना हजारे पार्ट टू है।
4: कांग्रेस का हमें पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा कुछ किया है उन्होंने। जाते जाते भी नेगोशिएट करके गए हैं कि लीगल केस ना हो, कॉम्पनसेशन मिले। तो पता नहीं सोनम जी के व्यक्तित्व पे सही सवाल उठाना सही बात नहीं है।
0: Questioning the Congress party, of course, is the Kokrel Janata party there asking as to why they're questioning Sonam Wangchuk, who's been on the streets, he's been on that indefinite fast, and questioning as to why he's ended his fast. Aishwarya, my colleague, joining us in order to get us details. Aishwarya, take us through, breaking news coming in of the Kokrel Janata party really holding the Congress now responsible for raising those questions against their leader of sorts. So we're talking about Sonam Wangchuk breaking his fast and the kind of remarks that have come about, particularly from Imran Masood.
6: Well, that's right. In fact, it was Imran Masood of the Congress party who stated that it is Anna Andolan Part 2. And ultimately, remember, at that point in time, it was stated by the Congress party that Anna Hazare got compromised with the opposition parties, and therefore they ended their fast, and that's what happened with Sonam Wangchuk as well. It is, certainly... now what we have been told is that after Imran Masood's comment, the CJP has slammed Imran Masood, stating that whatever Congress wants to think they can, but certainly so because of Sonam Wangchuk, the negotiations took place between the government and the CJP. It is also the compensation that now has been agreed, and government is positive to give a compensation to the parents of those students who committed suicide because of NEET paper leak case. The CJP also gave credit to Sonam Wangchuk on having negotiations with the government as far as no legal case to be taken against students who are protesting there at Jantar Mantar, and also who protested at the parliament. So yes, giving the CJP clearly taking credit, giving credit to Sonam Wangchuk and slamming the Congress party over the comments of Anna Andolan 2.0 of Imran Masood, and stated that whatever Congress wanted to think, or whatever any other opposition party wanted to think, they can. But certainly what we have seen in the backdrop is that the Congress party clearly taking the entire student protest forward to the parliament as well, and many in the Bharatiya Janata Party had stated that the Congress has completely hijacked the CJP protest.
0: Right, Aishwarya, we should just listen in to Imran Masood of the Congress party there calling Wangchuk Anna Hazare Part 2, and like Aishwarya mentioned, that he struck a deal with the government is what is being said by this Congress MP. Let's listen in.
7: Anna Part 2, 12 saal Anna khamosh ho gaye, ab Wangchuk sahab khamosh rahenge. ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था, कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना आप डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ?
0: And staying with the news, as far as the protest is concerned, the Delhi police have now widened their probe into the student protests at Jantar Mantar. So, sir, telling NDTV that a facial recognition system scan backed by CCTV footage and social media analysis has identified nearly 400 people with criminal records who were present around the protest site between the 20th of this month till the 24th. Sosa also claiming that one history sheeter has been linked to the violence that took place on the 20th of July, when police personnel were attacked and several officers were also injured. These findings are now being used to trace the role of criminal elements in the protests, and investigators are examining whether organized offenders were part of the unrest.
8: जंतर मंतर पर पुलिस ने FRS इनेबल कैमरे लगाए हैं। अब इसको लेकर एक तरह की अफवाह उड़ रही है कि दिल्ली पुलिस छात्रों की जासूसी कर रही है, उनकी प्राइवेसी को भंग कर रही है। आखिर एफआरएस सिस्टम क्या होता है, जिसको एक देशी भाषा में परख भी कहते हैं, ये पूरा सिस्टम कैसे क्या होता है और कैसे काम करता है। इस वक्त मैं एफआरएस के कंट्रोल रूम में हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग कैमरों की लाइव फीड आ रही है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग निकल रहे हैं। अब एफआरएस सिस्टम काम कैसे करता है, जो एफआरएस इनेबल कैमरे हैं वो यहाँ पर अगर कोई अपराधी घूम रहा है या कोई संदिग्ध है, कोई असामाजिक तत्व है जिसका पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसे लोगों की पहचान करता है और तुरंत उनकी तस्वीर यहाँ पर आती है और यहाँ पर जो उनका डोजियर है यानी कि जो उनका पुराने केस हैं उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर आता है। तो जैसे ही कोई सस्पेक्ट आता है इन कैमरों की जद में, चाहे भले ही सैकड़ों लोग खड़े हों, उनमें से उस सस्पेक्ट की फ़ोटो वो निकालता है और पूरी फ़ोटो जो उसका पूरा बैकग्राउंड है वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जो कंट्रोल रूम में बैठा शख्स होता है और नोटिफिकेशन आते ही उसकी पूरी जानकारी यहां पर आती है। और राइट में ये आप जो देख रहे हैं डेटा, यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है उसमें हज़ारों की संख्या में जो असामाजिक तत्व हैं, क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं, उन सबका यहाँ पर डेटा इस सॉफ्टवेयर में है और पूरा जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, पूरा डोजियर है, फ़ोटो तस्वीरें, वो सारा इस सॉफ्टवेयर में होता है। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर जो है वो एफआरएस इनेबल कैमरों से कनेक्ट होता है और जैसे ही कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर आया उसकी तुरंत यहाँ पर तस्वीर आती है और फिर ये कंट्रोल रूम में जो राहुल बैठे हैं या कोई और बैठा होता है वो तुरंत मौके पर जो गेट पर स्टाफ होता है जहां पर ये शख्स होता है उसको इन्फॉर्म करते हैं कि ये सस्पेक्ट या अपराधी यहां पर दिख रहा है और पुलिस वहां पर पहुंचकर उसको वेरीफाई करती है कि क्या ये जमानत पर है या ये गिरफ्तारी कैसे बच रहा है, कोई भागा हुआ अपराधी है। तो इस तरह के कैमरे जो है वो इसलिए लगाए गए हैं जंतर मंतर पर क्योंकि पुलिस को इस तरह के इनपुट मिल रहे थे कि वहाँ पर कुछ बैड एलिमेंट यानी कि असामाजिक तत्व, अपराधी किस्म के लोग भी आ रहे हैं, तो उनकी पहचान करने के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये कैमरे लगाए गए हैं।
0: Right, and it's been 5 days since the first violent clash that started in Jantar Mantar in Delhi. The fallout continues. Protesters and police personnel have both paid a price and the tension refuses to die down. The police continues to face allegations of excessive force with Rahul Gandhi presenting a young man who claimed he suffered pellet injuries. At the same time, the police say that they have come under attack as well over the past few days, with multiple FIRs that have been registered and scores of security personnel being injured. Around 60 protesters were also injured in the clashes that took place on the 20th of this month. The bigger question is who is responsible for this as far as this confrontation is concerned. Why does the cycle keep repeating? And to understand what happened on the ground, we have Padmaja, my colleague, speaking to two police officers. Let's listen in.
9: मैं आपसे शुरुआत करती हूँ प्रदीप जी, ये बताइए कि ज्यादातर तो लोग को लगा था कि जो भी हिंसा हुई थी 20 तारीख को ही हुई थी, 21 तारीख को आपको चोट कैसे लगी? पहले ये बताइए आपको चोट लगी क्या है?
10: मैम 21 तारीख को करीब शाम को 7:30 बजे हम लोग मैम कौसा रोड पर जंतर मंतर के पास खड़े थे और वहां पर मैम कुछ गैदरिंग 700-800 लोगों की थी और मैम देवर मूविंग टुवर्ड्स अपना संसद मार्ग और वहां पर जो है हमारे ऑफिसर्स और हमने जो है उन लोगों को रोकने की कोशिश की भाई कि आप लोग जो है इस आगे मूव मत कीजिए और उनको समझाते हुए आपस में बातचीत करते हुए कुछ लोग उसमें अग्रेसिव हो गए मैम और उन लोगों ने हमारे पर अटैक किया।
9: किस तरीके से अटैक किया? आपको ये चोट जो लगी है सर पे कैसे लगी है?
10: उसमें कई तरह के एलिमेंट्स हैं मैम, उसमें पथराव भी हुए हैं, बॉटल भी फेंकी गई है मैम, कुछ मतलब शार्प है चीजें भी फेंकी गई है। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे क्या लगा, बट मैम जो है कोई शार्प वेपन था बिकॉज मैम चार टाके लगे और आंख के ऊपर जो है मैम काफी गहरी चोट।
9: आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके के लोग थे, क्योंकि पुलिस में आपको एक अंदाजा होता है और ये बात भी सच है कि जब मैं जंतर मंतर गई थी तो वहां पर कई मुझे ऐसे बच्चे जो जेन्युइन बच्चे हैं वो दिखे थे, जो वहां पर अपना एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, जो वहां पर गाना गा रहे थे, झंडा पकड़े हुए थे, पर एक साइड ये भी है कि कुछ उपद्रवी थे। क्या बैकग्राउंड के लोग आपको ये लग रहे थे? क्या उम्र क्या होगी, बैकग्राउंड क्या होगा, कुछ बताएंगे?
10: एज ग्रुप हर किस्म के थे, बच्चे ही थे और उसके अंदर ना मिक्स एज ग्रुप के लोग थे और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ही नहीं थे, बहुत से एलिमेंट्स थे मैम और जो उनका बिहेवियर था और वो मैं सडनली कह सकता हूँ कि वो स्टूडेंट्स का नहीं था, बिहेवियर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हमने ड्यूटी कर रखी है, हर जगह हम लोग जाते हैं और स्टूडेंट्स कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते और ना ही करते। तो एज पर माई नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में देवर नो स्टूडेंट्स।
0: And with that, it's a wrap on this edition. We will continue our coverage as far as what's happening at Jantar Mantar, and will those talks, the round three between the

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: India is at a 2030 turning point. EVs, hybrids, biofuels, or hydrogen, what fuel wins where? Join top auto CEOs, policy experts and industry titans at the NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026.
5: Where you need charging infrastructure, you need it on highways.
4: Catch the exclusive coverage only on NDTV Automate.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: India is at a 2030 turning point. EVs, hybrids, biofuels, or hydrogen, what fuel wins where? Join top auto CEOs, policy experts, and industry titans at the NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026.
7: Where do you need charging infrastructure? You need it on highways.
6: Catch the exclusive coverage only on NDTV.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
1: अरे मेरे राजा।
3: India is at a 2030 turning point. EVs, hybrids, biofuels, or hydrogen. What fuel wins where? Join top auto CEOs, policy experts, and industry titans at the NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026.
4: Where you need charging infrastructure, you need it on highways.
3: Catch the exclusive coverage only on NDTV.
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: इंडिया इज एट अ 2030 टर्निंग पॉइंट। EVs, hybrids, biofuels or hydrogen, what fuel wins where? Join top auto CEOs, policy experts and industry titans at the NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026.
6: Where do you need charging infrastructure? You need it on highways.
5: Catch the exclusive coverage only on NDTV Automate.

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: दिस इज इंडिया इंक्स रोल ऑफ ऑनर रेकग्नाइजिंग द लीडर्स शेपिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी वेयर एंबिशन एंटरप्राइज एंड एक्सलेंस मीट इन द प्रेजेंस ऑफ द फाइनेंस

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टिल मसाला।
5: इंडिया इज एट अ 2030 टर्निंग पॉइंट। EVs, hybrids, biofuels or hydrogen, what fuel wins where? Join top auto CEOs, policy experts and industry titans at the NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026.
6: Where you need charging infrastructure, you need it on highways.
5: Catch the exclusive coverage only on NDTV Automate.

0: They just cut across to the police, who are holding a press conference on the protests as far as the NEET exams are concerned.
1: पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हालिया घटनाओं पर आयोजित इस प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन की एक खास बात यह है कि इसमें सोशल मीडिया, खास तौर पर इंस्टाग्राम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह न्यूज़ और अपडेट पाने का एक बड़ा सोर्स बन चुका है। सोशल मीडिया के इस प्रोटेस्ट संबंधित उपयोग में कई बार यह भी देखा गया है कि कई असत्य, भ्रामक एवं गुमराह करने वाले पोस्ट भी शेयर किए गए हैं। इसके चलते कानून व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी बहुत ही तेजी से वायरल हो जाती है, लेकिन हर पोस्ट, वीडियो या फोटो सही हो यह जरूरी नहीं है। इसीलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले या उसे आगे शेयर करने से पहले उसका फैक्ट चेक करना बेहद जरूरी है। दिल्ली पुलिस भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखे हुई है। फेक न्यूज, AI और डीप फेक वीडियोस, एडिटेड क्लिप्स और गुमराह करने वाली पोस्ट के बारे में हम लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जानकारी साझा कर रहे हैं, ताकि लोग सही और गलत जानकारी के बीच फर्क समझ सके। आज की इस ब्रीफिंग का उद्देश्य आपके सामने फैक्ट्स रखना है और यह बताना है कि किस तरह सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो भी जानकारी आपके साथ साझा करूं, उसके फैक्ट्स भी आपके साथ साथ आपके सामने यहीं इसी स्क्रीन पर सामने रखूं। मैं कुछ ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहूंगा जिनका मकसद पैनिक फैलाना या सिंपल फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना नजर आ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में मेरी सहायता वैशाली करेंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहता हूँ जिसमें दावा किया गया कि 20 जुलाई की घटनाओं के दौरान पुलिस कार्रवाई की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन किया और स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो फेक न्यूज अलर्ट हमने जनरेट किया। नेक्स्ट दिखाइए। जैसे इससे पहले ये र्यूमर जो सर्कुलेट कर रहा था, उसके लिए हमारा जो पोस्ट हमने डाला दिल्ली पुलिस ने, यह भी आप देख सकते हैं। इसी तरह एक राजनेता ने रात में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी कर रही है। इस वीडियो से लोगों में डर, भ्रम और अफरा तफरी की प्रबल संभावना बनी। दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है और लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
2: दोस्तों, आज
1: ऐसे ही कुछ हैंडल्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने में सक्रिय पाए गए थे। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक बयानों को एडिट करके और विजुअल कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। फर्जी कंटेंट में एआई या डीप फेक वीडियो में शामिल एक श्री सोनम वांगचुक जी का भी वीडियो है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा।
2: दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन जब मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाया जा रहा था, उन्होंने मेरे लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं बार बार कहता रहा कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी।
1: ठीक है, एक अन्य डीपफेक वीडियो में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी डीजीएमओ के नाम से एक झूठा बयान जोड़कर यह दावा किया गया कि चल रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के कारण भारतीय सेना को नई दिल्ली में तैनात किया जा रहा है।
3: प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, आई हैव ऑर्डर्ड द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन फोर्सेस टू न्यू दिल्ली। वी मस्ट क्रश द एंटी नेशनल एंड टेररिस्ट प्रोटेस्टिंग इन जंतर मंतर न्यू दिल्ली। These terrorists have attacked police and RAF personnel while blackmailing the government. I want to make it clear that we will crush every head that.
1: ऐसे कई सारे और वीडियोज हैं, बट आज दिखाने के लिए हमें कुछ वीडियोज आपके सामने लेके आए हैं। पेपर लीक और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इररेगुलरिटीज के खिलाफ भारत सरकार की कमिटमेंट के तहत दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टीम एक डीसीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में और स्पेशल सीपी क्राइम के सुपरविजन में काम करेगी। इस संबंध में आदेश कल ही जारी कर दिए गए हैं। अंत में हम दिल्ली पुलिस की तरफ से सभी शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स और जंतर मंतर पर दिन रात काम कर रहे वॉलंटियर्स का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने इस पूरे समय शांति व्यवस्था और कम्युनिटी सिक्योरिटी बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की भरपूर सहायता की है। दिल्ली पुलिस आगे भी अपने ऑफिशियल हैंडल्स के माध्यम से वेरिफाइड जानकारी साझा करती रहेगी और किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी समय समय पर आप सभी तक पहुंचाती रहेगी। अंत में मीडिया के सभी साथियों, आज यहां आने के लिए और अपना कीमती समय यहां देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।
4: रोहित जी, इसमें एक दो चीजें और।
0: This was the first press conference as far as the situation at Jantar Mantar by the police. The police are saying that do not rely on what you see on social media, because using social media platforms is, you know, those are deep fake and AI generated videos that have been edited. And that is something that the police there is warning of, saying any information on social media gets viral instantly and it's not necessary that every post you see on social media is true, and citing examples of that, saying that there was one such post on social media that in fact went ahead and reported that one woman had died in the protest, which is false, that because there was nobody who died in the protest that took place at Jantar Mantar on the 20th. So that is something that the police has come out and said. And there was one political leader sharing a video on social media that the Delhi police is about to crack down on the protesters on social media, because of which the atmosphere got tense. And that is something that the official has gone ahead and said, that there have been you know, the officials there coming out and, you know, talking about the kind of you know, presence as far as the social media presence is concerned, and that really has aggravated the situation, that took the situation out of hands, and that is what the police had to say in their defense of what really transpired on the 20th at Jantar Mantar. So the cops there speaking on you know, claiming that information has been altered while, you know, using social media to spread that very message. Anushka, my colleague, is joining us in order to get us details. Anushka, take us through, you know, we just heard the police there speaking on the matter for the very first time, breaking the silence, talking about what really went on and how social media has a big, huge role to play in it.
5: Well, that's right. We have seen that the DCP of Central Delhi has, in fact, in a press conference, shared how social media, deepfake and AI are being used to spread false information and edited videos. He has in fact also gone on to say that multiple times it has been seen that false news has circulated. Any information on social media that gets viral instantly is not necessarily true. And every post that you can see is in fact sometimes generated through AI, deepfakes and edited videos that are being fact-checked so that the people get the right information. He's also shared about instances that has gone viral on social media which later on proved to be false. Now, he has also in fact shared that it was spread by the social social media that a woman has died in the protest, which was false. Nobody has died in the protest. One political leader, the DCP, has gone on to say that he shared a video that...

0: डील, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
1: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
2: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, of Saturday.
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
3: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान.
0: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद. तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन

0: उस प्रदर्शन की तीन मुख्य मांगे थी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं उन एफआईआर्स को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ ना के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ, एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है, जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
1: तो आप लोग
0: जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विड्रॉ। सर मे बी इफ यू कैन।
2: मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और रंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटर्न मसौदा लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक फोर पॉइंट्स था, उसका लबो लबाव ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस केस इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं, और सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस वट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो फाइव पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस फाइव पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी, मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सब से कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
0: On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली गई।
2: चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी, हो गया।
1: Well, a big announcement there by Cockroach Janata Party spokesperson Saurav Das and Ashutosh Ranka, both of them announcing that the CJP withdraws the protest now as all their demands have been met. They've, of course, given the government some time to come up with a final format on education reforms. They've also said the government has also agreed to their demands on withdrawing cases against protesters on July 20th and also about compensation to families that have faced deaths due to NEET paper leaks. But the main point is CJP spokespersons have announced that the protests now stand withdrawn. They've asked protesters to go home safely, which means that the deadlock seems to have been resolved, at least for now. My colleague Aishwarya Jain joins us with more details on this. Aishwarya, the big takeaways from the joint press conference today, the ministers there, JP Nadda and Dr. Jitendra Singh also shaking hands with CJP spokesperson Saurabh Das and Ashutosh Ranka. Remember, this is a small outfit, you know, it's a reactionary outfit. It's not even a political party that came into force just a few weeks ago. It started protest at Jantar Mantar seeking resignation of Dharmendra Pradhan, the education minister. NEET paper leak was amongst its core issues. Sonam Wangchuk, the activist, joined them. He fasted and then his fast was broken. The ministers have been talking to these leaders for some time now. It's the third round of talks at Constitution Club. The talks seem to have reached a conclusion, with both the spokespersons now announcing that the protests are being withdrawn. My colleague Aishwarya Jain joins us with more details on this. Aishwarya, the big highlights of today's press conference.
3: Well, the very important point, JP Nadda clearly stating that yesterday it was a 5-point charter that was handed over by the Cockroach Janata Party to the Government of India. And the government has agreed to have discussion on that 5-point charter that will be changing the reforms in the examination and education system of the country. And that will be discussed, and the government will get back to the CJP after 4 weeks of time. That has been also one of the very important point that was announced. But it was a joint press conference, the meeting that lasted between the CJP delegation and the union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh for almost 1.5 hours. That concluded with a joint press conference over here at the Constitution Club. The CJP delegation, which comprises of Ashutosh Ranka and Saurabh Das, categorically stated that after the talks with Government of India, they have decided to withdraw this particular protest at Jantar Mantar and all across the country, and also urge the protesters and students.
1: Aishwarya, I'm sorry to interrupt you. There's more information coming in from the presser. Let's take a look at it.
0: जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड एक्सेप्ट हुए। एक मिनट, आप बताइए। देखिए, इस आंदोलन को तो पहले दिन से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों पर भी अलग अलग टैग्स लगाए गए, एंटी नेशनल बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि इस देश के युवा ने सच्चाई देखी, इस देश के युवा ने हमारा इंटेंट देखा, और जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे थे उस मुद्दे से सभी लोग रेजोनेट किए, और बहुत पीसफुली 37 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद रहे, सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ, और हमें बहुत खुशी है कि अब हम लोग जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी बहुत पीसफुली होगा। नहीं, देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी पॉपुलर जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, बहुत ही पीसफुल पढ़े लिखे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया। ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में घुसे हैं, जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है, उन सबके बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे, और आज फाइनली 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली
4: गई। इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट घुसाए गए, हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, रिपोर्टर्स नहीं लेकिन जो मीडिया के ओनर्स है एंड जो एंकर्स है और जो एडिटर इन चीफ है, उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं और एंकर्स हैं उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग है। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट में और इस देश में कोई स्पेस नहीं है, ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए।
1: That's Saurabh Das and Ashutosh Rank of the Cockroach Janata Party making it very clear that their demands have been met by the government and that the protests stand withdrawn now. But they're also saying that it's important for people to understand that these demands were raised by them almost a month ago. It took time for the government, but now they've been met. My colleague Aishwarya Jain joins us with more details on this. Aishwarya, a 5-point charter has been given to the government by the CJP, the Cockroach Janata Party. And this is to do with education reforms. The government says that it will look into those reforms, those moves, those important efforts that are needed, and then it will get back to them after 4 weeks. But their more important demand of Dharmendra Pradhan's resignation has already been accepted. He has resigned already, which means, the battle for them is done, and they're asking supporters, they're asking protesters to go back home. Does that mean that the protest is likely to end in the next few hours?
3: Well, that's something that has been also urged by the Cockroach Janata Party spokespersons to the protesters and students out here, stating that yes, the students should go back to their homes and the demands have been met by the government of India. It took time, obviously. They the joint press conference ended, they are holding their own separate press conference over here. They stated that it took time for these talks. The government should have come to the students much earlier, and they shared that disappointment at last, but agreeing to all the demands, it seems that the deadlock has finally ended between the students and the Cockroach Janata Party. Of course, the three demands pertaining to, number one, the resignation of Dharmendra Pradhan has been accepted. The compensation is something that JP Nadda categorically stated that according to the rules, the compensation will be given to the parents of those students who lost their life, and this is unfortunate that governments also thinks on their part. Number three, there will be no FIRs that will be registered, and the FIRs that have already been registered will be withdrawn. And JP Nadda specifically stated about those FIRs that have been registered in the BJP ruled states and in the national capital as well. Yes, of course, as far as the 5-point charter, it was submitted by the CJP delegation to JP Nadda yesterday.
1: Sorry to interrupt you again. Activist Sonam Mangchuk is speaking now. This is first reaction after today's updates. Let's listen in to what he said.
5: जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में, और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवक और बड़े बूढ़े लोकतंत्र के लिए खड़े हुए, उन सबका सम्मान करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी आगे भी। ये जो शक्ति है लोकतंत्र की, वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाए उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है, तो उसे बनाए रखें। अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई, तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है, वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। तो अब जब इस आंदोलन को जरूरत पड़े और कुछ आगे लेना हो या फिर अभी रोकना हो, जो भी करें बहुत ही शांति से करें, मैं ये उम्मीद करता हूँ। कि एक तरफ जब जवाबदेही हमें मिली इस बार की, तो अब सुधार पर काम करने की जरूरत है। केवल एक इस्तीफा से, रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है, तो शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी आगे काम हो। मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा। जहां भय है वो नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से देश को चलाया जाएगा, और अन्याय न होकर सत्य के रास्ते पे चलाया जाएगा। और वैसे ही जहां कहीं भी जिस रूप में भी भ्रष्टाचार है उसे हटाया जाएगा, और सच्चाई के रास्ते पे एक भारत देश के लिए और विदेशों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, सच में विश्व गुरु बनेगा। ऐसी मेरी आशा है कि ये एक नया भारत की शुरुआत होगी। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि इस बदलाव के साथ ही बहुत से और बदलाव भी लाएंगे शासन चलाने के तरीकों में भी। अब क्योंकि मैं लद्दाख से हूं और एक पर्यावरण कर्मी हूं, एनवायरमेंटलिस्ट हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा सरकार के से कि जो लद्दाख के पहाड़ों को संरक्षित करने की, वहां के लोगों को लोकतंत्र देने की प्रक्रिया चली है, उसे भी बिल्कुल ईमानदारी से चलाया जाए। उसे कमजोर करने की कुछ कोशिशें हो रही हैं, वो सब छोड़कर जनता के साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर हम सीमाओं को सुदृढ़ और शांत बनाएं, विकास के रास्ते पे लें, तो लद्दाख में बहुत ही ईमानदारी से लोगों के साथ ये प्रक्रिया जारी हो। बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में भी, जहां भी लद्दाख में हो, जम्मू कश्मीर में हो, जो लोगों से वादे किए हैं स्टेटहुड के, लोकतंत्र की, वो वहां भी बहाल हो, ये हमारी उम्मीद है। ये तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं। क्योंकि
1: activist Sonam Wangchuk, in his first reaction after Dharmendra Pradhan's resignation, has said that the protesters had sought accountability. They have gotten accountability now. Now it's time to work on reforms. He says that India can be on the path to become Vishwaguru. And he also credits peaceful protests, the peaceful agitation that he and the CJP protesters led for the last 1 month as the reason for this change. He said that this is a new beginning and that everyone has to work collectively towards changes that are necessary in the education system. Aishwarya Jain is here with us. Aishwarya, we were talking about the big takeaways from the joint press conference that ministers and CJP leaders held today. First of all, this joint press conference itself is quite an interesting idea, right? That means that the government wanted them to be seated on an equal footing. It wants an answer to this question. It wants resolution of the protest, and that seems to have really come because CJP leaders have called off the agitation now because their demands have been met.
3: Well, certainly, and government was from the very first day very sensitive about the students' welfare and the youth welfare, and therefore the reason perhaps as soon as the government and Prime Minister also himself stated that for the last 2.5 months the government has taken many major steps in reforming the education system, the decisions were

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
1: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
5: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राव।

0: bore those atrocities with fortitude, it's a victory for all of them.
1: सरकार झुक गई है, सरकार ने युवाओं की बात मान ली है और आज प्रधान का राजीनामा आया, अब इस्तीफा आया, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी बड़ी बात है। 12 साल से इस देश का लोकतंत्र आईसीयू में था, कोमा में था, सांस नहीं ले पा रहा था। एक ऐसा आंदोलन हो गया इस लोकतंत्र में और लोकतंत्र को वापस खड़ा कर दिया।
2: आई थिंक इट्स अ विक्ट्री फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, जो इतने दिनों से भूखे प्यासे वहाँ खड़े रहे और बिल्कुल कोई उन्होंने वायलेंस नहीं किया। आई थिंक गांधी इज इंडिया इज रिक्लेमिंग इज स्पेस इन आर कंट्री। द यूथ हु डोंट बिलीव इन डिविजन, जो हिंदू मुस्लिम में बिलीव नहीं करते हैं, डीप पोलराइजेशन में बिलीव नहीं करते हैं, उन्होंने इस मुल्क में जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसकी जगह को संभाला। और मुझे लगता है आई फील इंडिया इज इन सेफ हैंड्स नाउ बिकॉज द इंडियन यूथ हैव रिजन टू द ओकेजन एंड दिस रिजिग्नेशन इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स यू नो द यू नो टू रिक्लेमिंग व्हाट इंडिया शुड लुक लाइक।
3: देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था ताकि इतना नुकसान नहीं होता इतने पूरे देश में हुआ। लोगों जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, चार चार पांच पांच क्वेश्चन पेपर हो और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके ताकि उनमें विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे।
4: You know, today everyone is talking about the power of youth, but look, at the end of the day, it's all going to boil down to politics, Vasudha, and to put it very, very crudely and bluntly, who's going to walk away with the credit? That is what we are going to see over the next 3 weeks when Parliament finally functions.
5: That's right, Padmaja. In fact, there's also this, journey for credit. But at the same time, there are also disagreements which have cropped up in the last many days because, you know, clearly CJP and Congress have their own disagreements. Congress and Samajwadi Party have their own sense of
4: differences
5: as well. Yes, and they are openly fighting with each other as well. So at some level, maybe the government is also very clear that it's reaching out to youngsters directly and it's hoping that this decision, Dharmendra Pradhan's resignation, will hold it in good stead, at least with this demographic.
4: In fact, we'll talk much more about that. Time now for a very quick break. More on the other side with Vasudha.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
8: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप, आई एम रेयरिंग टू गो। द स्टोरीज दैट मैटर, द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ। The show that sets the prime time agenda will be deep diving into this topic to tell you what's at stake. Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
9: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
10: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break.
11: Well, the Trinamool Congress in West Bengal held a solidarity rally for students. Mamata Banerjee, former Chief Minister of West Bengal, was seen riding pillion on a bike. Padmaja, what was happening here? Because she's also

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबा केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: followers, and he thought that having an enhanced number of followers on Insta can resolve the issue. And I can tell you one thing, he should have read the writing on the wall instead of what was written in teleprompter.
1: It is a victory for the student and the youth movement of India, for Generation Z or Gen Z as they are called, and their fearlessness in the manner in which they stood up to unprecedented state excesses, the use of coercive force, lathis, pellet guns, and did not flinch and bore those atrocities with fortitude. It's a victory for all of them.
2: सरकार झुक गई है, सरकार ने युवाओं की बात मान ली है, और आज प्रधान का राजीनामा आया, अब इस्तीफा आया, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी बड़ी बात है। 12 साल से इस देश का लोकतंत्र आईसीयू में था, कोमा में था, सांस नहीं ले पा रहा था। एक ऐसा आंदोलन हो गया इस लोकतंत्र में और लोकतंत्र को वापस खड़ा कर दिया।
3: आई थिंक इट्स अ विक्ट्री फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, जो इतने दिनों से भूखे प्यासे वहाँ खड़े रहे और बिल्कुल कोई उन्होंने वायलेंस नहीं किया। आई थिंक गांधीज इंडिया इज रिक्लेमिंग इज स्पेस इन आर कंट्री। द यूथ हु डोंट बिलीव इन डिविजन, जो हिंदू मुस्लिम में बिलीव नहीं करते हैं, डीप पोलराइजेशन में बिलीव नहीं करते हैं, उन्होंने इस मुल्क में जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसकी जगह को संभाला, और मुझे लगता है आई फील इंडिया इज इन सेफ हैंड्स नाउ बिकॉज द इंडियन यूथ हैव रिजन टू द ओकेजन, एंड दिस रिजिग्नेशन इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स यू नो द यू नो टू रिक्लेमिंग व्हाट इंडिया शुड लुक लाइक।
4: धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, ये एक नैतिक जीत है, लेकिन केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही इसका कारण नहीं है, इसके पीछे तमाम चीजें और हैं। सरकार को अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, ये क्या थोड़ी बड़ी जीत है।
5: देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था ताकि इतना नुकसान नहीं होता, इतने पूरे देश में होया। लोगों जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, चार चार पांच पांच क्वेश्चन पेपर हो, और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि उनमें विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे।
6: हमारे देश के युवाओं को, जेन ज़ी को बहुत बधाई, बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया, धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था, लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी, हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा, ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है, और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी।
7: A very important day for the government, probably for the first time in 12 years, a sitting minister for education, surrounded by controversies, by protesters, has resigned. It will have implications on the politics of the BJP, also on opposition politics, and yes, on street politics as well. What's going to happen on Monday is a different game altogether. But what we are waiting now is also the name of the person who's going to be given this charge. Remember, there's going to be a lot of scrutiny on whoever the next education minister is. We are told that the announcement could come any time now. It could even be tomorrow morning. But heads in the government are working towards giving this responsibility to a seasoned cabinet minister. With that, it's time for a short break. My colleague Padmaja Joshi joins you on the other side.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
4: Launch control, zero.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
9: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
10: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
11: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
10: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट। Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,

0: देश का टायर जेके टायर।
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
5: Launch control 0 to 100.
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
7: This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
9: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
4: R Pure Shahi Paneer Masala.

0: थे ऑफिसर्स जो भी संबंधित लोग, ऑल द 14 हैव बीन अरेस्टेड, वो सब अभी दे आर बिहाइंड द बार। एंड इससे पहले जो कानून था उसके कानून में प्रोविजन बहुत वीक था। प्राइम मिनिस्टर मोदी गॉट इट अमेंडेड इन 2024 जून। इसमें एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट लाया, उस अमेंडमेंट में 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 करोड़ फाइन है। इससे पहले कानून नहीं था जी, इसीलिए डर नहीं था। ये रिसेंटली ये कानून हुआ है, उसका नोटिफिकेशन हुआ है, रूल्स आया है, तो इसके कारण अभी जो होगा इसका कन्विक्शन और डर भी ज़्यादा होगा। तो पीएम साहब ने ये कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, इतने लोगों को अरेस्ट किया है। नॉट ओनली दैट, जब ऐसे लीक हुआ, ऐसे पता चला, इमिडिएटली इसका एग्जामिनेशन कैंसिल किया। एक नीट एग्जामिनेशन फिर से चलाने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन विद इन 40 डेज री एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया। अभी सीट मैट्रिक का इशू चल रहा है, अभी काउंसलिंग होगा। तो जो लोग अपीयर हुआ, 11 लाख लोग क्वालिफाई हुआ है, तो वो क्वालिफाइड मार्क्स आने के बाद इसका काउंसलिंग होगा। तो ये सब को अभी वो तैयारी में है, दे आर बिजी इन दैट। स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड एंड दे गॉट सक्सेसफुल, वो उसमें बिजी है। और पहले इनका डिमांड था क्या अपोजिशन का, कि डिबेट हो जाए। हमने बोला डिबेट हम तैयार है। जब हमने डिबेट के लिए एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, अभी बोल रहे इस्तीफा देना चाहिए। तो मैं स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जब पावर में है करप्शन, जब अपोजिशन में है तब डिसरप्शन।
1: And from deadlock to breakthrough, after 30 days of protest, the government-student standoff is finally over. The center has announced an overhaul of the National Testing Agency and sweeping education reforms. Here's how the education protest ended.
2: The slogans have stopped. The protest site that became the epicenter of NEET paper leak movement has been vacated. After 36 days of demonstrations, fasts, and negotiations, the CJP agitation has ended. The announcement came moments after the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, CJP's principal demand since the protest began. In an unusual joint press conference, Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh stood alongside CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka. The message from both sides was clear. The standoff was over.
3: The Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timeline.
2: The breakthrough, CJP says, extends beyond the minister's resignation. According to the group, the government has agreed to withdraw police cases filed against protesting students. It has also assured that no future punitive action will be taken against them for participating in the agitation. Another key assurance relates to families of students who allegedly died by suicide in connection with the NEET paper leak controversy. The government, CJP says, has agreed to provide compensation in accordance with applicable rules and regulations.
4: जो 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन गई है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पेंसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पेंसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा।
2: इन द लास्ट 48 आवर्स द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड स्वीपिंग रिफॉर्म्स, रिप्लेसिंग द एजुकेशन सेक्रेटरी, रिमूविंग डजंस ऑफ एनटीए ऑफिशियल्स, approving tougher anti-paper leak legislation and proposing fast-track courts. But protesters remained firm. They insisted the movement would continue until Dharmendra Pradhan resigned. On Saturday, the demand was met.
5: Diwali of Genjis, the first time history of India.
6: It is starting of a new era for the new people of India.
2: Now both sides

0: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम ही हो भारत का स्वागत।
1: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. Before we get to the headlines, let's tell you the biggest story of today has been about the resignation of the education minister and many more meetings that followed after that. We get you one by one everything that's happened throughout the day. But first, here's the headlines. Education Minister Dharmendra Pradhan resigns. Education Minister cites moral grounds for his resignation, saying the students' future is paramount. President approved Dharmendra Pradhan's resignation, gives additional charge of the Education Ministry to Union Minister Prahlad Joshi. CGP calls off protest at Jantar Mantar after holding third round of talks with the government. Celebrations also erupted at the protest site in the aftermath of Dharmendra Pradhan's resignation. Leader of opposition Rahul Gandhi congratulates protesting NEET students after Dharmendra Pradhan's resignation, says this is the first step towards revamping the education system. He further reminds that there are two more demands that the government needs to fulfill. In fact, he's also gone ahead asking for change in the government completely. And we're starting this edition with the breaking news that's coming in. We learn that the Telangana Chief Minister Revanth Reddy has announced that the state government would soon adopt a resolution in the assembly that is urging the centre to amend the constitution to reduce the minimum age for contesting the Lok Sabha and assembly elections from 25 to 21 years. Now, he's also argued that India's Gen Z deserves greater representation in the legislatures and governance as well. Here's that exclusive conversation with Revanth Reddy.
2: फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिएक्शन क्या है जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और आपने भी अभी एक अनाउंसमेंट किया है?
3: हाँ हाँ आशीष जी, ये मेरा बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये जंतर मंतर में जो विजय हासिल किए हमारे जेंजी युवा ने, ये कोई राजनीति कोई पॉलिटिकल पार्टी को कोई लेन देन नहीं है, ये नीट परीक्षा और सीबीएसई में जो केंद्र सरकार ने शिक्षा और परीक्षा में फेल हो गए, तो इसीलिए जो शिक्षा और परीक्षा के जो जिम्मेदारी है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए ये लोग मांगे थे, ये तो आज जो जो जो विजय हासिल किए ये युवाओं का विजय है। इसीलिए मैं आज एक ही बात मैं साफ कहना चाहता हूँ, उन लोगों के आवाज सड़क में सुनाए, पूरा दुनिया सुने, अभी ये आवाज संसद में सुनाने का बहुत जरूरी है, आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बहुत जरूरी है, इसीलिए हम तेलंगाना राज्य सरकार से ये डिसाइड कर लिए, अगस्त पहले वार में हम लोग असेंबली बुलाएंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, 21 साल जो भी कंप्लीट होते हैं वो असेंबली एमएलए के लिए लोकसभा लड़ने के लिए हम रेजोल्यूशन पास करवा देंगे और राज्यसभा एंड शासन मंडली के लिए 25 साल।
1: All right, more breaking news coming in on the broadcast. We learn that it is Asaduddin Oweisi who has given a statement and he has invoked the Uttar Pradesh elections after the resignation of Dharmendra Pradhan. Now, Oweisi has gone ahead to say that today it was Pradhan who has tendered his resignation and tomorrow a big change would likely be seen in Uttar Pradesh as well. This is Oweisi's message to the youth nationwide.
4: के आने वाले विधानसभा में नौजवानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार बनाएगी ताकि वो जाकर आपकी बेभाग तरीके से आपकी नुमाइंदगी करेंगे और हमारी ये कोशिश होगी कि 2029 का जब चुनाव होगा तो कोई 80 साल का शख्स भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा बल्कि कोई 45 बनेगा।
1: All right, so ladies and gentlemen, today it was a day full of political developments. Following days of sustained student protest in Delhi and across the country, Union Education Minister Dharmendra Pradhan has

0: उस अमेंडमेंट में 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 करोड़ फाइन है। इससे पहले कानून नहीं था जी, इसीलिए डर नहीं था। ये रिसेंटली ये कानून हुआ है, उसका नोटिफिकेशन हुआ है, रूल्स आया है, तो इसके कारण अभी जो होगा इसका कन्विक्शन और डर भी ज़्यादा होगा। तो पीएम साहब ने ये कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, इतने लोगों को अरेस्ट किया है। नॉट ओनली दैट, जब ऐसे लीक हुआ, ऐसे पता चला, इमिडिएटली इसका एग्ज़ामिनेशन कैंसिल किया। ये एक नीट एग्ज़ामिनेशन फिर से चलाने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन विद इन 40 डेज री एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया। अभी सीट मैट्रिक का इशू चल रहा है, अभी काउंसलिंग होगा। तो जो लोग अपीयर हुआ, 11 लाख लोग क्वालिफाई हुआ है, तो वो क्वालिफाइड मार्क्स आने के बाद इसका काउंसलिंग होगा। तो ये सब को अभी वो तैयारी में है, दे आर बिजी इन दैट। स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड एंड दे गॉट सक्सेसफुल, वो उसमें बिजी है। और पहले इनका डिमांड था क्या अपोजिशन का, कि डिबेट हो जाए। हमने बोला डिबेट हम तैयार है। जब हमने डिबेट के लिए एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, अभी बोल रहे इस्तीफा देना चाहिए। तो मैं स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जब पावर में है करप्शन, जब अपोजिशन में है तब डिसरप्शन।
1: And from deadlock to breakthrough, after 30 days of protest, the government student standoff is finally over. The center has announced an overhaul of the National Testing Agency and sweeping education reforms. Here's how the education protest ended.
2: The slogans have stopped. The protest site that became the epicenter of NEET paper leak movement has been vacated. After 36 days of demonstrations, fasts, and negotiations, the CJP agitation has ended. The announcement came moments after the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, CJP's principal demand since the protest began. In an unusual joint press conference, Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh stood alongside CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka. The message from both sides was clear. The standoff was over.
3: The Kokrul Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timeline.
2: The breakthrough, CJP says, extends beyond the minister's resignation. According to the group, the government has agreed to withdraw police cases filed against protesting students. It has also assured that no future punitive action will be taken against them for participating in the agitation. Another key assurance relates to families of students who allegedly died by suicide in connection with the NEET paper leak controversy. The government, CJP says, has agreed to provide compensation in accordance with applicable rules and regulations.
4: जो 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन गई है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पेंसेशन पॉसिबल होगा, ऑनररी कॉम्पेंसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा।
2: इन द लास्ट 48 आवर्स द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड स्वीपिंग रिफॉर्म्स, रिप्लेसिंग द एजुकेशन सेक्रेटरी, रिमूविंग डजंस ऑफ एनटीए ऑफिशियल्स, approving tougher anti-paper leak legislation and proposing fast-track courts. But protesters remained firm. They insisted the movement would continue until Dharmendra Pradhan resigned. On Saturday, the demand was met.
5: Diwali of Genjis, the first time history of India.
6: It is starting of a new era for the new people of India.
2: Now both sides are projecting the outcome as a negotiated settlement rather than a confrontation. But CJP says the process isn't over. It has submitted a broader charter of education reforms and says another round of discussions with the government is expected in about 4 weeks. Bureau Report, NDTV.
1: Well, the political

0: got it amended in 2024 June.
1: Okay.
0: इसमें एक बहुत बड़ा amendment लाया. उस amendment में 10 years of imprisonment and 1 crore fine है. इससे पहले कानून नहीं था जी, इसीलिए डर नहीं था. ये recently ये कानून हुआ है, उसका notification हुआ है, rules आया है, तो इसके कारण अभी जो होगा इसका conviction और डर भी ज़्यादा होगा. तो पीएम साहब ने ये कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, इतने लोगों को अरेस्ट किया है. नॉट ओनली दैट, जब ऐसे लीक हुआ, ऐसे पता चला, इमिडिएटली इसका एग्ज़ामिनेशन कैंसिल किया. एक नीट एग्ज़ामिनेशन फिर से चलाने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन विद इन 40 डेज री एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया. अभी सीट मैट्रिक का इशू चल रहा है, अभी काउंसलिंग होगा. तो जो लोग अपीयर हुआ, 11 लाख लोग क्वालिफाई हुआ है, तो वो क्वालिफाइड मार्क्स आने के बाद इसका काउंसलिंग होगा. तो ये सब को अभी वो तैयारी में है, दे आर बिजी इन दैट. स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड एंड दे गॉट सक्सेसफुल, वो उसमें बिजी है. और पहले इनका डिमांड था क्या अपोजिशन का, कि डिबेट हो जाए. हमने बोला डिबेट हम तैयार है. जब हमने डिबेट के लिए एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, अभी बोल रहे इस्तीफा देना चाहिए. तो मैं स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जब पावर में है करप्शन, जब अपोजिशन में है तब डिसरप्शन.
2: And from deadlock to breakthrough, after 30 days of protest, the government student standoff is finally over. The center has announced an overhaul of the National Testing Agency and sweeping education reforms. Here's how the education protest ended.
3: The slogans have stopped. The protest site that became the epicenter of NEET paper leak movement has been vacated. After 36 days of demonstrations, fasts, and negotiations, the CJP agitation has ended. The announcement came moments after the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, CJP's principal demand since the protest began. In an unusual joint press conference, Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh stood alongside CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka. The message from both sides was clear. The standoff was over.
4: The Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timeline.
3: The breakthrough, CJP says, extends beyond the minister's resignation. According to the group, the government has agreed to withdraw police cases filed against protesting students. It has also assured that no future punitive action will be taken against them for participating in the agitation. Another key assurance relates to families of students who allegedly died by suicide in connection with the NEET paper leak controversy. The government, CJP says, has agreed to provide compensation in accordance with applicable rules and regulations.
5: जो एक करोड़ का कॉम्पेंसेशन हमने नीट की नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन गई है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पेंसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पेंसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा.
3: इन द लास्ट 48 आवर्स द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड स्वीपिंग रिफॉर्म्स, रिप्लेसिंग द एजुकेशन सेक्रेटरी, रिमूविंग डजंस ऑफ एनटीए ऑफिशियल्स, approving tougher anti-paper leak legislation and proposing fast-track courts. But protesters remained firm. They insisted the movement would continue until Dharmendra Pradhan resigned. On Saturday, the demand was met.
6: Diwali of Genjis, the first time history of India.
7: It is starting of a new era for the new people of India.
3: Now both sides are projecting the outcome as a negotiated settlement rather than a confrontation. But CJP says the process isn't over. It has submitted a broader charter of education reforms and says another round of discussions with the government is expected in about 4 weeks.

0: ही थी। तो इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था।
1: I'm very very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people.
2: इस गवर्नमेंट को तोड़ने में जहां बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टियां नाकाम रही, वहां पे देश की जेंजी ने, देश की युवा पीढ़ी ने, ये 17 साल 16 साल 18 साल के बच्चों ने देश की इतनी मजबूत और अहंकारी सरकार को झुका दिया। और इनके बहुत गद्दावर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिसके पीछे कहा जा रहा था पूरी की पूरी सरकार इनके पीछे खड़ी है, उनको अंततः इस्तीफा देना पड़ गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है।
3: All right, with that, it's time for us to slip in a very quick break. Don't worry, news and updates continue on the other side.
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.